0: ऐसा कोई काम किया नहीं उनके साथ पिछले 7-8 साल के 6-7 साल के, लेकिन कहीं कहीं किसी फंक्शन वगैरह में या कहीं ऐसे मुलाकात है तो कहीं ना कहीं हेलो हाय तो होती रहती थी, लेकिन काम साथ में किए हुए काफी वक्त हो गया।
1: अच्छा सर, नाना पाटेकर एज एन एक्टर अपनी रेंज के लिए भी जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत सीरियस इंटेंस रोल्स भी करे हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी समथिंग है जो कि जो जनरेशन है ऑल अक्रॉस जनरेशन लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप उनका बॉडी ऑफ वर्क एज समबडी कमिंग फ्रॉम मीडिया किस तरह देखते हैं?
0: जैसे मैंने कहा कि एक अपनी तरह के अकेले एक्टर थे और क्या है कि ही वाज अ वेरी एफिशिएंट एंड वेरी रेगुलर थिएटर एक्टर आल्सो। तो क्या होता है कि जब आदमी थिएटर वेटर करता है तो उसमें, और मराठी में बहुत बड़ा उनका नाम है, मराठी सिनेमा में मराठी थिएटर में बहुत बड़ा नाम, उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, तो उससे एक अलग पहचान बनती है एक्टर की। और उन्होंने जैसे मैंने कहा कि ही मेड अ निश फॉर हिमसेल्फ, अ ग्रेट प्लेस फॉर हिमसेल्फ, एंड द काइंड ऑफ जो उन्होंने अपने करेक्टर क्रिएट किए लाइक 90s में 80s 90s में 2000 जो कि फिल्में की, तो एक उन्होंने एक अलग सी जगह बनाई, पहचान बिल्कुल अलग बनाई। और मैं ये कहूंगा कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में काम करने वाले बहुत कम एक्टर होते हैं, बाकी काफी एक्टर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा लगता ही कॉम्प्रोमाइज किया और जो इनको पसंद आया वही किया।
1: जी आपने बोला कि एक एक्टर वो थे अपने खुद के टर्म्स के, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सबसे यादगार मेमोरी, सबसे यादगार पल वो कौन सा है जो आपने इनके साथ सेट पे शेयर करा?
0: सी मैंने जो मेरी सबसे लंबी इनके साथ एसोसिएशन रही वही फिल्म थी मेरी तिरंगा, तो उसमें हमने बहुत सारा काम किया साथ में, कई दिन बिताए और उसको काफी समय हो गया अभी, आई थिंक इट्स अराउंड 25-30 years back, बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड फिल्म एंड वेरी वार्मली रिमेम्बर्ड बाय द ऑडियंस, सो उसकी कुछ मेमोरीज है, बट एनीवे ही वाज अ नाइस एक्टर, ग्रेट ग्रेट एक्टर, ग्रेट मैन, इंडस्ट्री विल मिस हिम।
1: राइट सर, आपको वो कॉन्वर्सेशन याद है जो आपकी सबसे आखिर की कॉन्वर्सेशन हुई थी पाटेकर साहब के साथ?
0: नहीं, मतलब ऐसा था कि अब जैसे कि क्या होता है जैसे कोई फिल्म में धुरंधर के बाद तो उनका फोन नहीं आया, लेकिन अक्सर ऐसा होता था पहले कि कोई फिल्म देगी तो फोन करते थे, राकेश तुम्हारा ये काम देखा, तुम्हारा ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, तो ऐसे करते थे फोन, लेकिन अभी तो पिछले 2-3 साल में तो मैंने कोई बात की थी उनसे।
1: ओके सर, ऑफ कोर्स अ ट्रैजिक लॉस फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। All right, of course, devastating information that we're tracking early this morning. You could, in fact, hear Bollywood actor Rakesh Bedi visibly shaken with what news he had heard. Of course, he'd also worked extremely closely with Nana Patekar. Colleagues all across the film fraternity remember Nana Patekar as an actor that worked on his own terms and did the films that only he wanted to do. So, of course, devoid of pressure, devoid of what film that he was compelled to do, he did only the scripts that compelled to him, that spoke to him. My colleague Abira is with us on the broadcast. Abira, you know, this is how colleagues are remembering him. We just heard Rakesh Bedi talk about how Nana Patekar was considered an actor of his own terms.
2: Absolutely. You know, I was like, I can't pinpoint a single film of his and say, this was not good enough, because there was a film Mustafa, there was Khamoshi where he played a dumb and deaf person. I mean, what performances, every performance was different from each other. There was Ab Tak Chhappan, and at the same time we had Raju Ban Gaya Gentleman, while even it didn't matter how long his role was, his performance was the highlight of the film always. Like I said, in Raju Ban Gaya Gentleman, he was not the main lead. He was there, but that character everybody remembers. Even when he played main leads also, it was beyond anything. Like, for example, Ab Tak Chhappan. When Ab Tak Chhappan came, people absolutely loved his character, the depth that he got to his character. He played, a cop. And, that's exactly what I'm saying. He was too good at his craft. And the last film that he did was O Romeo with Vishal Bharadwaj. And in February 2026, it released. And, Vishal Bharadwaj said his commitment was something that he has never seen before. He had 102 temperature and still he made sure

0: इंक्वायरी की तब पता चला कि 5 बजे के आसपास उन्होंने उनके कोई मैंने जो रिश्तेदार है उनको फोन किया और तब वो रिश्तेदार वहां पहुंचे और वहां से उनको जब हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे तो हॉस्पिटल में उनकी डेथ डिक्लेयर कर दिया। मुझे मैंने वेरी एक अच्छा दोस्त हमने गंवा दिया है, अच्छा एक्टर हमने गंवा दिया है और नाना पाटेकर फाउंडेशन की तरफ से उनका बहुत ही यानी सोशल सेक्टर में काम चल रहा था, बहुत बड़ा काम वो बाकी सभी जगह पे कर रहे थे। तो उनके फैमिली के मैंने दुख में मैं शामिल हूँ यानी दिस इज अ वेरी बिग लॉस फॉर द कंट्री।
1: So you've mentioned that you were personal friends with him. He spent much of his time in Goa, as you've highlighted as well. What is the memory of him that stays with you? What is the one memory of Nana Patekar that you think audiences would never see on screen, on camera?
0: Nana Patekar social sector mein bahut bada kaam karna chahte the. Wo abhi bhi unka kaam chal raha tha. Yani mujhe lagta hai ki wo उनको सोशल सेक्टर में भी काम करने की उनकी बहुत ही बड़ा काम करने की उनकी इच्छा थी। गोवा में भी वो काम करना सोशल सेक्टर में उनका काम अभी बनाना चाहते थे लेकिन वो अभी कर नहीं पाए, इसके लिए उसका दुख है मुझे।
1: So there are many tributes pouring in. He had a particularly strong connection with ordinary people and with rural communities in Goa and beyond as well. क्या आपने वो साइड उनका देखा व्हाइल ही वाज इन गोवा? डिड यू सी दैट अप क्लोज एंड पर्सनल?
0: उस दिन मैं फंक्शन में नहीं था लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा था गोवा के एक कोकणी सॉन्ग पे, वो डांस भी कर रहे थे। इतने कलाकार मैंने छोटे छोटे कलाकारों के साथ भी इतने वो इन्वॉल्व थे। 2 दिन पहले उनका फंक्शन रोटरी क्लब के एक फंक्शन में थे और कलाकारों के साथ वो डांस कर रहे थे।
1: We also know that he was deeply associated with Marathi theatre, with cinema. He had a career spanning several generations, sir. What in your view was his lasting contribution to our culture?
0: Unka Marathi film Natasamrat jo tha, wo to Marathi kabhi Marathi log kabhi bhul nahi sakte hain. Natasamrat film unki jo unhone ki thi. Then it will remain for the forever in the memory of the Marathi people.
1: And Mr. Sawant, if you actually had to describe Nana Patekar to someone who had never seen any of his films, what would you say made him so distinctive?
0: Hello?
1: Hello? Am I audible to you, Mr. Sawant?
0: Yes, yes.
1: I was asking that if you had to describe Nana Patekar to someone who had actually never seen any of his films, had never seen him on screen, what would you say made him so distinctive?
0: Definitely unki jo Krantiveer film thi wo to bane yani sabse achhi film rahi hai aur lekin main jo batane ke liye bataunga ki jinhone kabhi unko film mein nahi dekha hoga unke liye to Nana Patekar ek ne नाना पाटेकर एक ऐसे आदमी थे जो सबके लिए किसी भी ऑर्डिनरी आदमी से लेके सबके लिए यानी बाय हार्ट ही इज वेरी गुड।
1: In fact, that is a sentiment that is being echoed by his colleagues as well across the film fraternity too, Ms. Sawant. What would you like the people of Goa to remember about Nana Patekar today, beyond the celebrity that he was, beyond all the awards that he amassed?
0: नाना पाटेकर हमेशा के लिए गोवा के लोगों के याद में रहेंगे क्योंकि वो गोवा में हमेशा के लिए आते जाते थे। एंड बीइंग एज अ गुड एक्टर, एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड सोशल वर्कर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही विल रिमेंबर फॉरएवर इन द मेमोरी ऑफ द गोवा पीपल। थैंक यू।
1: राइट, एंड जस्ट बिफोर वी लेट यू गो मिस्टर सावंत, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम दिस मॉर्निंग। व्हेन यू थिंक ऑफ नाना पाटेकर एंड गोवा टुगेदर, कंसिडरिंग ही लव्ड स्पेंडिंग टाइम इन द स्टेट, व्हाट इज द फर्स्ट इमेज और मेमोरी दैट कम्स टू योर माइंड?
0: मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि नाना पाटेकर फॉरएवर गोवा के लोगों के लिए याद रहेंगे। प्लीज, थैंक यू।
1: मिसेस सावंत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। नाना पाटेकर इज नो मोर, वन ऑफ इंडियन सिनेमाज मोस्ट डिस्टिंक्टिव एक्टर्स, अ परफॉर्मर हुज वॉइस, हुज इंटेंसिटी एंड श्योर प्रेजेंस, इट कुड टर्न इवन अ फ्यू लाइंस इनटू अ सीन दैट वी रिमेंबर्ड फॉर इयर्स। He has died at the age of 75. We're told he was found unconscious at his home in Goa, and preliminary reports indicate a severe cardiac arrest. But from Parinda and Prahar to Krantiveer to

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
3: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
4: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: You will now witness the vibrant parade marching in columns in front of the dais, presenting a salute to the reviewing officer. When the president colors are marched in front of you, it is requested to rise in its honor. Uniform personnel shall salute.
1: आप सभी से अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी गण सल्यूट करें।

0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: You know, designs कितने हैं? लाख से भी ज़्यादा डूड।
4: और सारे हैं BIS Hallmark Certified। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार, अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: Well, Nana Patekar will be accorded a state funeral, the Maharashtra government has announced, recognizing his extraordinary contribution to Marathi theatre, Marathi cinema, and of course Hindi cinema too. The veteran actor passed away at the age of 75. He was found unconscious at his Goa home and was rushed to the hospital. According to preliminary analysis, he suffered a severe cardiac arrest, and doctors tried to revive him for nearly 45 minutes, but there was no response. He was declared dead at 5:20 a.m. this morning, and since then, tributes have been pouring in. You know, he brought an unusual intensity and authenticity to his work, moving effortlessly between theatre, between film, between deeply serious roles and comedy, and eventually becoming known as much for his life away from the spotlight as for his work on it. The state honour today is recognition of that body of work, but also of his place in India's cultural life. You know, from the stage to some of India's most memorable performances, Nana Patekar leaves behind a legacy that spans generations. Tributes have been pouring in from the film fraternity and his friends. Listen in to the reactions we've lined up for you this morning.
1: I was brought dead in the hospital, somewhere around 4:30 plus, and he was declared dead by 5:30. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 to 1 hour, but he just could not be saved. As per our what we have recollected, that he called somewhere around 2:30. He sent a message to his friend that he was not feeling well, but as it was night time, he could not see the message. So he just called him. He went to his house at somewhere around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. So they removed him, all those primary things, but he was slowly becoming unconscious. They started cardiac massage because he was totally unresponsive. And when they went there, they shifted him on cardiac massage.
2: Mr. Eknath Shinde is now joining us on the phone line. Shinde ji, thank you so much for speaking to NDTV. आपने अपने पोस्ट में लिखा है, महाराष्ट्र का गौरव और मराठी मानुस का मान आज चला गया है. नाना पाटेकर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है, उसके बारे में बताएंगे हमें, हमारे व्यूअर्स को?
3: बहुत ही आज की घटना दुखद है, बहुत ही दुर्दैवी घटना है, और आज भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि वो एक बड़े कलाकार थे, कलावंत थे. उन्होंने कई मराठी हिंदी फिल्म बनाई और इतनी लोकप्रियता उनकी थी. एक नेचुरल उनकी भूमिका करने का जो उनका ये था, उनकी स्टाइल थी, वो सभी को पसंद रहती थी. और वो महाराष्ट्र को एक स्वाभिमानी नेता, स्वाभिमानी अभिनेता होते, इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र का स्वाभिमान हमने गवाया है, एक बड़ा भाई गवाया है, एक सच्चा और दिलदार मित्र गवाया है. हमारे उनके बहुत ही पारिवारिक संबंध थे, और ये सिर्फ फिल्म में काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ फिल्म में बनाई नहीं, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है. उनको कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपने किसान जो है, किसानों को राहत देने के लिए नाम फाउंडेशन के माध्यम से बड़ा काम किया है. किसानों की आत्महत्या कम हो, उनका जीवन में बदलाव हो, ये पानी नाम फाउंडेशन के माध्यम से नदी तालाब में से मिट्टी निकालना, पानी का स्टोरेज बढ़ाना, किसानों को उसका फायदा कराना, इस पर बहुत उन्होंने काम किया है. और सूखा, अभी महाराष्ट्र में सूखा है, अभी हमारे को नाना की महाराष्ट्र की जरूरत थी, क्योंकि किसानों को मॉरल सपोर्ट देना, ये इस वक्त नाना की आवश्यकता में जरूर, ये कमी जो है वो जरूर खलेगी.
2: जी बिल्कुल. शिंदे जी, आपने ये भी बोला था कि गणेश उत्सव के दौरान आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी नाना पाटेकर जी के साथ, और उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें?
3: मैं उनके गणपति में हर साल पुणे में उनके खेती में जो घर है, वो गांव में जो घर है, उसमें जरूर जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का वातावरण भी अच्छा लगता है. नाना एक किसान के रूप में भी मैंने देखा है, खेती करने वाला नाना भी मैंने देखा है. और उस वक्त मैं जब गया था, तब मेरे घर में मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। नाना को जब पता चला तो नाना मुझ पर नाराज हो गए, तो बोले भाभी के पास आपको रुकना चाहिए था, आप यहाँ नहीं आते, अगले साल गणपति में आते तो भी चलता था। लेकिन मैंने उनको कहा हमारी मित्रता, आपका प्रेम मुझे यहाँ पर खींच के लाया है। इतनी बड़ी घनिष्ठता हमारे दोनों के बीच में थी, वो मुझे बड़े भाई की तरह हमेशा मार्गदर्शन करते थे और हमेशा मुझे स्पष्ट रूप से कई बातें वो कहते थे।
2: शिंदे जी, आपने एक बहुत खास बात लिखी है जो मैं पढ़ना चाहूंगी कि नाना जी आपके दारेगांव में गटर सफाई के काम के लिए आए थे। इतने बड़े एक्टर थे वो, ही वुड बी ऑन द ग्राउंड वर्किंग, ये उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है?
3: देखिए, बहुत बड़े नेता होते, अभिनेता थे और उनका सम्मान था समाज में। लेकिन जब गाँव में मैंने उनको बुलाया कि नदी हमारी जो कोयना रिवर है उसमें मिट्टी भरी हुई जो है नाम फाउंडेशन के माध्यम से डिसेल्टिंग करना था, इसलिए खुद आए हो, खुद आ गए और खुद उन्होंने आने के बाद वो आए, बहुत ही उन्होंने बड़ा काम किया है
2: जी।
3: और मैं इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये भी कहा था मुझे कि मेरे सफेद कपड़े देखकर कि एक भी दाग नहीं रहने वाला नेता के रूप में मैं तुझे देखता हूँ, इसका मुझे गर्व है, अभिमान है।
2: आपने ये भी लिखा था कि 2022 में सियासी उथल पुथल के दौरान उन्होंने आपसे बात की थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जब उन्होंने आपके शोल्डर पर हाथ रखकर बात की थी, आपने उसके बारे में भी कुछ बताया था, उस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं?
3: बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलते थे, कोई क्या सोचे कोई क्या नहीं सोचे इसकी परवाह कभी करते नहीं। वो उन्होंने मुझे कहा था 2022 में महाराष्ट्र में सरकार जो बदल चेंज हो गई, लोगों के मन की सरकार आई, तब उन्होंने मुझे कहा था जब मिलते ही काय क्रांतिवीर, तो मैं बोला आप असली क्रांतिवीर हो, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही वो जो कहने की बात जो थी, एक पारिवारिक और एक मित्रता के नाते उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा था।
2: शिंदे जी, हम सब नाना पाटेकर को जानते हैं ऑन कैमरा, कम लोग ही उनको ऑफ कैमरा जानते हैं, आप उनमें से एक है, उनके बारे में और क्या बता सकते हैं जो व्यूअर्स को ना पता हो अभी?
3: जैसे नाना अंदर है वैसे बाहर है, जैसे बाहर नाना थे वैसे ही अंदर है, अंदर थे, दिल में एक, पेट में एक, वोट में एक, ऐसा नाना कभी नहीं थे। और नाना स्पष्ट वक्ता जरूर थे, रोक ठोक बीच बिल्कुल जरूर थे, किसी को तुरंत कहा सुनाना है तो कहा सुनी करा देते थे। लेकिन दिल से बहुत मृदु थे, बहुत ही दिल से बहुत नरम थे और बहुत ही जिस पर दिल से प्रेम करते थे उसके हर एक सुख दुख में शामिल हो जाते थे, वो हर एक छोटी मोटी बातों में वो ध्यान रखते थे, ये उनका बड़प्पन है। और इसलिए एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन करने वाला बड़ा भाई हमने खोया है।
2: शिंदे जी, आप उनके आखिरी सपने के बारे में भी बात कर रहे थे, उसके बारे में बताएंगे हमें?
3: उनका यही था कि हमारे महाराष्ट्र के किसानों के जीवन बदला हुआ है और किसानों को आत्महत्या ना करे, और कश्मीर में उन्होंने जो उनका बेटा मल्लार है, उनकी टीम जो है वो कश्मीर के स्कूलों पर काम कर रही थी, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिले, वहाँ जो बच्चे हैं समाज के मुख्य धारा से जुड़े, उनके दिल में देशभक्ति का निर्माण हो, राष्ट्रभक्ति का निर्माण हो, इसलिए वो स्कूल पर कश्मीर में बड़ा काम कर रहे थे।
2: शिंदे जी, बिफोर वी लेट यू गो, आप नाना पाटेकर, हाउ शुड वी रिमेम्बर हिम, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, उनको हम कैसे याद रखें, आप कैसे चाहते कि हम उन्हें याद रखें? यू वर क्लोज टू हिम, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ही क्लोज रहा है, बड़े भाई की तरह।
3: नाना पाटेकर हमारे में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो काम किया है, वो सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा और जो जो उन्होंने सोचा है उसको आगे बढ़ाने का काम उनके परिवार के साथ हम लोग मिलकर करेंगे, यही उनको श्रद्धांजलि साबित होगी। धन्यवाद।
2: थैंक यू। दैट वाज मिस्टर एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इट्स बैक टू यू इन द स्टूडियो परमेश्वर।
0: Vedika, as always, thank you so much. Nana Patekar will be accorded a state funeral. The Maharashtra government has announced, recognizing his extraordinary contribution to Hindi cinema, to Marathi theatre and Marathi cinema, of course. We've got tributes pouring in this morning for Mr. Patekar. Listen in to some that we've lined up for you.

0: करते थे और 75 साल की उम्र में भी बिल्कुल बिल्कुल फिट थे, 100% फिट थे। उन्होंने जिंदगी अपने हिसाब से जी, उन्होंने काम अपने हिसाब से किया।
1: मुझे सुबह 7 बजे अभी भी मुझसे पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो मैं कम कम कर रहा है, पूरा में शूटिंग कर रहा हूँ। तो जब मैं गोवा में आया, देखा तो सच न्यूज़ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऑन न्यूज दिया है, सच न्यूज है, झूठ है।
2: सच अ सैड न्यूज, माय गॉड। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं आई वॉज गोइंग टू गो, आई वेंट टू फ्रॉम गोवा, आई वेंट टू बेलगांव, बेलगावी, एंड ऑन द वे बड़े एक आइसोलेटेड एक जगह पे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ नाना पाटेकर जी का घर है, और वो बिल्कुल ही एक अलग सॉलिट्यूड में ही घर था, एकदम से लोनली था। तो मुझे बस यही ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं है कि उनका, जब उनको हेल्प चाहिए थी तो नहीं मिल पाई, ऐसा तो पता नहीं, यू नो, या दूर था बहुत, मुझे ऐसा मेरी फीलिंग आ रही है। बिकॉज उनका घर मैंने देखा था बाहर से, तो काफी अलग से दूर से हटके जगह पे था वो, थोड़ा सा
3: जी।
2: तो आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म विद हिम, एंड माय तिरंगा, आई हैव गॉट वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट फिल्म विद हिम।
4: Oh, no, you can't compare him with anybody else. He's one of the finest actors, I think, not just India, but the world has produced. And a man, a 100% gentleman, one of the finest actors, and a man with a sense of humor, and really a golden heart. He was a very, very kind man and very honest. And I had the privilege of working with him in a movie. And he loved the line which said, I did a music video in the movie, actually. It says, Apni kismat ka tu hai God, zindagi hai 22 gaz ki daud, bat ko rakha le, rakh chip ka, run to bana le par wicket bacha. And he would always say, that's what I'm trying to do, wicket bachane ka. And we'd all laugh in the vanity van together. And on behalf of everybody, I'd like to say, we're all really, really sad about this terrible void that has been created by his.
3: Well, Nana Patekar, who died at 75, had attended the Samrat Club International installation ceremony in Goa in Dona Paula on the 4th of October. And there he reportedly said, and I quote, "We all have to go someday. I don't know whether I will be here tomorrow or not. Every person's life will eventually reach that point. But before that happens, I have to ask myself, am I able to do what I want to do?" He's been quoted from that event there. Udit Narayan now joins us on the broadcast this morning. Mr. Narayan, aap bataiye, aapke sabse khas memory kya hai Nana Patekar ji ke saath? What was he like between takes? Was he as intense off camera as he was on screen? Or is that one of the biggest misconceptions about him?
5: Just I heard about him and really can't believe कि he is no more. क्या बताऊँ, मतलब veteran actor and such a dynamic personality. मतलब मुझे भी काम करने का मौका मिला उनके साथ फिल्म तिरंगा, and one of the film I भूल गया वो नाम, but music by राजेश रोशन जी. तो वो आए, बोले उदित मैं जैसा गाता हूँ ऐसा गाओ. तो मैंने उनको देखा, एडमायर किया. मैं बोला यार एक्टर तो वेटरन एक्टर है ही, बट द वे ही ट्रीट्स मी एंड सिंग विथ मी, माय गॉड, कांट बिलीव, विद इन ए हाफ एन आवर गाने हो गए. आर वॉज सो हैप्पी. तो वो सब सारी मेमोरी है मेरे दिमाग में, दिलों में. वन कैन आई से अबाउट हिम कि लाइक एक्टर नाना साहब एंड पर्सनैलिटी, वी ऑल आर गोइंग टू मिस हिम. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.
3: इन फैक्ट मेनी हैव एक्सप्रेस्ड व्हाट यू आर एकोइंग एज वेल, दैट ही वाज ऑनेस्ट, ही वाज ट्रू टू द आर्ट, अ ट्रू आर्टिस्ट. He made everyone on set feel special. But tell us, Mr. Narayan, what was Nana Patekar's relationship with fame? Did he enjoy being recognized, or did he?

0: be more comfortable when he could disappear from the celebrity world that Bollywood is so often used to?
1: I can say about him that he enjoyed character and he is very, very capable. He was very, very capable. जब एक्टिंग करते थे और जब वो पर्दे पे आते थे तो लगता था कि क्या व्हाट इज रियलिटी, क्या रियल एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब मजा आ जाता था. यू नो थैंक यू सो मच एंड गॉड इज देयर.
0: मिस्टर नारायण, बिफोर वी लेट यू गो, फॉर समवन हु कुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेंस ऑन स्क्रीन, टेल अस व्हाट डिड नाना पाटेकर लाफ एट? Who or what could puncture that seriousness that we often saw on the screen?
1: बोलने के लिए बहुत कुछ है, you know. But एक ही बात दिमाग में है कि मतलब जो भी उन्होंने काम किया, जो भी उन्होंने एक्टिंग की, जो भी मर्दानगी के साथ इन फिल्म इंडस्ट्री में रहा, वो एक मेमोरेबल रहेगा हमारे बीच. एंड वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट हिम.
0: एंड एज योर पार्टिंग शॉट मिस्टर उदित नारायण, व्हाट वुड यू लाइक टू कन्वे टू मिस्टर पाटेकर्स फैमिली एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द ऑडियंस अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर दैट ही वाज ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन?
1: ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर एंड उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे, ऊपर वाला को मतलब सहने की शक्ति दे. थैंक यू
0: मिस्टर नारायण, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रेकफास्ट बुलेटिन दिस मॉर्निंग ऑन द NDTV नेटवर्क, वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स. देर हैव बीन मेनी डायलॉग्स एज वेल, फ्रॉम इंटेंस ड्रामा टू अनफॉरगेटेबल कॉमेडी, that have now been coined. Nana Patekar actually had a way of making every word count, his colleagues tell us. His powerful delivery turned dialogues into memories that stayed with audiences for generations. Let's just revisit some of Nana Patekar's most iconic dialogues and on-screen moments in this clip you're about to see.
2: सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए खिलौने समझौते कर चुका. भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन है, भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार है, उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा. It should be like this, you know.
3: दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है. देख, बीवी बच्चे का श्राद्ध किया, क्या नहीं था उसके पास, पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था, बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला, हम क्या किया, देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ के?
4: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता. बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला?
5: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से. कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं.
0: Well, one of Indian cinema's finest actors, Nana Patekar, left a distinct mark with his versatility, as you've seen, from the intensity of Krantiveer to the comedy of Welcome. But his greatest role has been off-screen. Known for his brutally simple lifestyle, Nana Patekar has dedicated a large part of his earnings to help drought-hit farmers of Maharashtra through his NGO NAM Foundation, which is an organization he co-founded with fellow actor Makarand Anaspure to provide relief, water conservation, and support to distressed farmers and their families. Take a look at this. Nana Patekar had spoken exclusively to NDTV in an earlier interview, sharing his thoughts on cinema, on life, and his journey as an actor. As we remember the legendary performer, let's just pause and look back at that conversation And here Nana Patekar in his own words from this earlier NDTV interview.
6: बात ये है कि देखा नहीं है उन्होंने, उनको मालूम नहीं, वो उनको जो सिर्फ फोटोज आते हैं और टीवी पे कुछ दिखता है, यहाँ के ये सहना है ना, ये आसमान के नीचे, तब पता चलता है यहाँ क्या चल रहा है। अब तो तू पूरा दिन भर भटकेगा, लेकिन कहीं तो अच्छे होटल में दो का खाना खाता है, पानी पीता है, आराम की नींद सोता है, फिर सुबह उठता है। उनको देखो यार, उसके सिवा तो उसके नीचे और वही कुछ है ही नहीं। जानवर है मेरे, गाय है, भैंस है, बैल, उनको मैं कुछ दे नहीं पाता जो मेरे लिए उगाते थे। अब उनको देखना पड़ता है, उनको पानी नहीं दे पाता मैं। मेरा बाप बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, बीवी बीमार हो गए, उनकी दवाइयों का खर्चा कर नहीं सकता, कोई इतनी महंगी दवाई है, खेती का जितना खर्चा उससे कई गुना ज्यादा तो हमारी दवाइयां हैं। करें क्या यार, फांसी क्यों ना लगाऊं मैं? बच्चे खाना मांग रहे, मैं दे नहीं पाता बाप होने के नाते, माँ बाप को दवा, बच्चा होने के नाते कुछ नहीं कर सकता, मर्द होने के नाते बीवी को कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर सोचता हूँ यार, ये मैं कैसे सहूं? फिर एक वो रस्सी है, डाल देता हूँ अपने गले में। एहसास है अकेलेपन का, वो तकलीफ देता है।
0: Well, tributes have been pouring in for Nana Patekar. He will be accorded a state funeral, the Maharashtra government has announced, recognizing his extraordinary contribution to the cinema space. Nana Patekar has passed away at the age of 75. He was found unconscious at his Goa home and was rushed to hospital. And as per the preliminary analysis, he suffered a severe cardiac arrest. Doctors tried to revive him for nearly 45 minutes, but there was no response. And he was declared dead at 5:20 a.m. this morning. On that note, we're slipping into a very quick break. We've got crucial updates regarding Gyanesh Kumar lined up for you in a moment. You don't want to miss this.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन्स कितने लाख से भी ज्यादा डूड
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiya.
1: NDTV stands completely engaged with them.
2: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened.
3: एकेडमिया और स्टार्टअप्स के आप सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का भारत में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सुबह ही एक खबर आई है कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया। वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया। उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में के कई एडिशंस में आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे इवॉल्व हुई, ये प्लेटफॉर्म इसका साक्षी रहा है। 2022 में इसी मन से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज हम सभी देख रहे हैं, देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इसी मंच पर 2024 में हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की मौजूदगी देखी। तब हमने डिजिटल वर्ल्ड के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत पर बात की थी और पिछले साल इन्वेस्ट, इनोवेट और मेक इन इंडिया पर चर्चा की थी। आज भारत टेलीकॉम सेक्टर में जहां पहुंचा है, उसमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते वर्षों में ये प्लेटफॉर्म भारत की प्रगति का, भारत के सपनों का मंच बनकर उभरा है। इसलिए मैं आप सभी का विशेष अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इस साल आप सभी ने इस समिट में अपने मंथन के लिए विषय तय किया है, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। हर सीमा से परे जाकर विस्तार। मैं आपको भारत के अनुभवों से बताना चाहूंगा कि हमने कैसे स्केल विदाउट बाउंड्रीज के सपने को जीकर दिखाया है। साथियों, जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो अक्सर नेटवर्क की चर्चा होती है, स्पेक्ट्रम पर डिबेट चलती है, टावर्स की रीच की स्पीड की बातें होती है, लेकिन भारत के लोगों के लिए टेलीकॉम के मायने और भी रहे हैं। बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन आधुनिक कम्युनिकेशन के माध्यम के साथ साथ गुड गवर्नेंस का भी अहम टूल बनकर सामने आया है और ये हमारे डिजिटल इंडिया विजन के कोर में रहा है। साथियों, आज हम सुनते हैं कि भारत में डेटा सस्ता है, मोबाइल फोन सस्ते हैं, मोबाइल फोन यूजर बेस इतना एक्सपेंड हो गया है, ये अपनी जगह सब सच है। लेकिन ये हुआ कैसे और ये सब किया क्यों गया, ये जब हम समझेंगे तो सभी को भारत का फोकस एरिया एकदम क्लियर होगा। साथियों, एक दशक पहले तक भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी एक प्रिविलेज बनती जा रही थी, यानी जिसके पास साधन है वही आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकता था। भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। डिजिटल इंडिया अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी और इसके सेंटर में मोबाइल फोन को लेकर के आए। ये टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रयास था। इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर में हर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया। हमने फोकस किया कि मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम हार्डवेयर भारत में ही बने। साथियों, ऐसे हर प्रयास से मोबाइल फोन और डेटा तक भारत के आम नागरिक की पहुंच और सुलभ हो गई और आज ये भारत के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे सब कुछ रुक गया था, लेकिन भारत में दफ्तर चलते थे, बैंक चलते रहे, पढ़ाई चलती रही। ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के कारण हुआ। मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने एजुकेशन, हेल्थ, पेमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज को बिना बाधा चालू रखा। आज दूर सुदूर गांव गरीब के बच्चे भी क्वालिटी नॉलेज एक्सेस कर पा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग सबकी पहुंच में आ रही है। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे डिजिटल इंडिया का इंपैक्ट और ज्यादा पता चलता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है। आप जानते हैं कि भारत

भाषा और भूगोल हर प्रकार से डाइवर्स देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके कारण लोगों के जीवन में अनेक असुविधाएं भी आती हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी ने इस डाइवर्सिटी को भी सुविधा से जोड़ा है। पहले ज्यादातर बैंक शहरों में ही होते थे, अस्पताल शहरों में होते थे, सरकारी दफ्तर ब्लॉक या जिला स्तर पर रहते थे, यानी कुछ भी काम करना हो, सरकारी सर्विस लेनी हो तो लोगों का पैसा और समय दोनों खर्च होता था। डिजिटल गवर्नेंस ने इन परिस्थितियों को बदला है। आज सरकार के सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है, सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के मोबाइल में भेजे गए बैंक अकाउंट में पहुंचे और इससे करीब 5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनके मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा। अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता। मोदी ने इसको रोका है और अब वही पैसा सही लाभार्थी को मिल रहा है और बचा हुआ पैसा सही काम के लिए उपयोग आ रहा है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं। ये राशि हर 4 महीने में जाती है और किसान को मोबाइल फोन पर ही इसका मैसेज मिल जाता है। ये पैसा उन करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचा है जिन तक कभी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता था। यानी साथियों, मोबाइल फोन सिर्फ चैट का माध्यम नहीं रहा बल्कि इसने लेस ट्रैवल, लेस वेटिंग, लेस कॉस्ट, मोर कन्वीनियंस, ये सब कुछ एंश्योर किया है और यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिटीजन डिविडेंड है। साथियों, बीते दशक में भारत में के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार हुआ है। रिमोट एरियाज में टावर्स लगाए गए, ऑप्टिकल फाइबर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और डेटा भी सस्ता हुआ। इससे इकोनॉमी के नए सेक्टर्स का भी निर्माण हुआ है।

0: इसे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर में नए कंज्यूमर भी बने और नए क्रिएटर्स की भी एक नई जनरेशन तैयार हुई है। आप गेमिंग का ही सेक्टर देखिए, एक अनुमान है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गेमिंग इकोसिस्टम से जुड़े हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में भारत के युवाओं की है। टीयर टू और टीयर थ्री शहरों का युवा भी इससे जुड़ा है। अब वो गेम से जुड़ने के साथ ही ई स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रहा है, गेमिंग कंटेंट बना रहा है और नए गेमिंग बिजनेसेस खड़े कर रहा है। यानी भारत में मोबाइल फोन आज गेमिंग कंसोल भी है और क्रिएशन का स्टूडियो भी बन गया है। साथियों, भारत में हुई टेलीकॉम क्रांति ने यही बदलाव कंटेंट की दुनिया में भी ला दिया है। बेहतर फास्ट कनेक्टिविटी और सस्ते डेटा ने अनेक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया और रीजनल ओटीटी को गांव कस्बों तक पहुंचा दिया है। इससे भाषा से जुड़ी जो समस्याएं आती थी, वो बंदिशें थी, वो भी दूर हो गई है। यानी केवल कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी इंडस्ट्री ही भारत में आज हजारों करोड़ रुपए की हो गई है, जिससे लाखों लाख लोगों को कमाई हो रही है। यानी मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन की को भी डेमोक्रेटाइजेशन का कर दिया है। साथियों, आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है। जब मैसेज आए, तो उसे पता हो कि वह असली है या फेक। जब पेमेंट हो, तो उसे विश्वास हो कि उसका पैसा सुरक्षित है। जब वह किसी फॉर्म में अपना डेटा दे, तो उसे विश्वास हो कि उसका डेटा सुरक्षित है। साथियों, टेक्नोलॉजी स्केल तभी प्राप्त करती है जब वो ट्रस्ट हासिल करती है। और आप सभी जानते हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी सीमाएं नहीं मानते, वो पहले ही बाउंड्री को बाहर चले गए। एक देश में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश की मदद से किसी तीसरे देश में क्राइम कर सकता है। डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। भारत ने इस दिशा में अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। और भारत अपने अनुभवों को विश्व के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार है। साथियों, इस दशक में अब सिर्फ 4 साल बचे हैं इस डेकेड में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस एडिशन में अब आप जो चर्चा करेंगे वो अगले दशक के रोडमैप को सशक्त करेगा, और ये रोडमैप भारत के साथ ही पूरे विश्व के मोबाइल मार्केट को दिशा देगा। बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। दशकों पुराने कानूनों को हम आधुनिक बना रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के जरिए हमने मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। एजीआर और बैंक गारंटी जैसे स्ट्रक्चरल वंडर्स को रेशनलाइज, वंडर्स को वंडर्स में बदलने का काम भी हमारी तरफ से हो रहा है। और गतिशक्ति संचार पोर्टल ने राइट ऑफ वे अप्रूवल्स को डिजिटल माध्यम से और तेज बनाया है। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक 5 लोकेशंस पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज में हमारा फोकस पूरी सप्लाई चेन पर है, यानी भारत टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन विकास की यात्रा नित नए पड़ावों को पार करने की है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। यहां जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हुई है उनका अपना महत्व है, लेकिन आईएमसी को उन पार्टनरशिप के लिए याद किया जाए जो यहां बनी है, उन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए याद किया जाए जो यहां शुरू हुए, उन प्रोडक्ट्स के लिए याद किया जाए जो यहां से दुनिया तक पहुंचे हैं, और उन इनोवेशंस के लिए याद किया जाए जिन्होंने भारत से निकलकर मानवता की सेवा की है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसके लिए ही जी जान से प्रयास करते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
2: Prime Minister Narendra Modi had paid tribute to veteran actor Nana Patekar, who passed away this morning. PM Modi remembered Nana Patekar for his intensity, individuality and unmistakable presence at the India Mobile Congress. He said Nana Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role, creating characters that would be remembered for generations. The Prime Minister also spoke of Nana Patekar's frank behavior, saying he never hesitated to express what he believed in. He paid tribute to Nana Patekar this morning. PM Modi said Patekar's contribution to Hindi and Marathi cinema was immense, and his

0: कई संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, और बदनाम करके और लोकतंत्र जो इतना जीवंत लोकतंत्र है भारत में उसको भी वो बदनाम करना चाहते हैं।
1: कांग्रेस पार्टी का व्यवहार बिल्कुल अर्बन नक्सलियों जैसा हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियोस के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के जवान को लातों से मारने का प्रयास कर रहे हैं, मार रहे हैं। राहुल गांधी खुद महिला पुलिस अधिकारियों को धक्का दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा खुद महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स को धक्का देने का प्रयास कर रही है। कल हमने देखा कि एक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी फैक्शन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुलिस कर्मी को दांतों से काटने का हरकत कर रहे हैं। ये सब यही पॉइंट करता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग एनार्की और अर्बन नक्सली व्यवहार सड़कों पर दिखा रहे हैं। अगर इनका मकसद लोकतंत्र बचाना होता तो ये लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करते, परंतु इनका मकसद लोकतंत्र बचाना नहीं परिवार बचाना है।
2: Will any decent individual, let alone a member of parliament or leader of opposition, behave in such an inappropriate manner with a woman, that too a female police personnel? What kind of message is Rahul Gandhi trying to convey to the woman of India or Nari Shakti with such crude and improper conduct? On one hand, Rahul Gandhi has the audacity to lecture about smash the patriarchy, and on the other hand, he engages in such indecent behavior. Disgrace on Rahul Gandhi for insulting the dignity of a woman, and if he has any sense of shame or guilt left, Rahul Gandhi should apologize immediately.
3: The political battle over the election commission shows no signs of easing. Congress President Karge will meet opposition MPs over lunch today at 1:45 p.m. before the India Bloc's protest. Now, meanwhile, in the view of protest, CC Gyanesh Kumar's Z Plus security has been beefed up with extra deployment at his residence and at the Nirvachan Sadan. The Congress is intensifying its stir. It declared October 7th as a black day in Indian democracy with pan-India protests at state, district and block levels. Now, this comes after dramatic scenes near Jantar Mantar where Rahul Gandhi and several opposition MPs were detained. Rahul has vowed to continue the fight till CEC Gyanesh Kumar resigns. And as Congress steps up the pressure, the BJP has hit back, slamming what it calls Rahul's Naki model.
4: मैं तो यही कहता हूं कि अराजकतावादी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें केवल समाज में विष घोलना आता है। अगर उतना नहीं था तो केरल में भी चुनाव इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया था, तमिलनाडु में जहां पीछे से वो सत्ता में पहुंचे हैं वहां का भी चुनाव इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया था। है हिम्मत तो राहुल गांधी जी को पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए, और जिस प्रकार से खेल रहे हैं वो पूरी तरह से जनता देख रही है। घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम इस नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, जिन लोगों का अलग अलग जगहों से आकर भारत के लोगों का हक मार रहे हैं उनको हक दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं तो मानता हूं कि भारत के संसाधनों पे, भारत के संपदा पे, भारत के भूमि पर यहाँ के लोगों का हक है, हम घुसपैठियों का हक नहीं होने देंगे।
5: गणेश कुमार के खिलाफ पूरे देश में, पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। सरकार को, चुनाव आयोग को अब राहुल गांधी की आवाज सुननी पड़ेगी, विपक्ष की आवाज सुननी पड़ेगी। आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप लोकतंत्र की आवाज को कुचल नहीं पाएंगे।
6: कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था बची हुई है जिसके ऊपर की राहुल गांधी का भरोसा है? तो जहां पर राहुल गांधी का भरोसा नहीं है तो इसका मतलब अम्बेडकर जी के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये एनार्की पैदा करना चाहते हैं और ये इस देश को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की साजिश है, और ये जनता कभी उसको माफ नहीं करेगी।
7: राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी देश को के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये तय कर लिया है कि जब तक ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन सदन से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, जब तक उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई है। और अमित शाह की पुलिस ने जिस तरीके की आज बर्बरता की लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, जिसके बाप का एसेसिनेशन हुआ, जिसकी दादी का एसेसिनेशन हुआ इस देश में, सिक्योरिटी ब्रीच था, जिस तरीके से उनको एक छोटी सी गाड़ी में बिठा करके ले जाया जा रहा था, गाली पलटने से बची थी। अगर राहुल जी को कुछ हो जाता तो अमित शाह जी आप समझ लीजिए, मोदी जी आप समझ लीजिए, आप जो है आग से खेलने का काम कर रहे हैं।
8: दिस विल कंटिन्यू टिल द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर ज्ञानेश कुमार। इट इज अ डिसीजन टेकन एट द मीटिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक लीडर्स held on 30th of last month. So we have to intensify the movement. Almost all MPs are still in Delhi. So we will chalk out future course of action. And many youth student organizations are also likely to join. So the movement which started in the year 2025 has now reached to such a level that no one can deny its importance. So this has become the need of the nation.
3: All right, as the political showdown continues, NDTV is bringing live coverage. I have with me my colleague Reet Sahani, live from the restaurant where the India Alliance MPs will have lunch today. Reet, yesterday we saw a lot of commotion and chaos when the opposition leaders wanted to stage a protest. They weren't allowed. There were detentions, dharnas. What is the expectation today? Who are the leaders who we can expect at today's lunch and after?
9: Right, absolutely, Shivani. You know, yesterday it was Sagar Ratna. Today I'm present in Connaught Place's Outer Circle, and I'm right outside the Mohit's restaurant. This essentially is a Chinese as well as Indian restaurant, and this is where we're going to see a lot of members of the opposition present. Of course, Congress President Mallik Arjun Kharge has called for a lunch at this very venue around 1:45 p.m. today. So a lot of opposition member parliaments will be present over here. As you can see, these are the inside visuals of the restaurant, and preparations are currently underway to host the member parliaments. What we are given to understand that we can see several member parliaments from the India Alliance. This includes Congress, Congress Member Parliament Rahul Gandhi. There will also be Priyanka Gandhi Vadra. Now, Congress President Mallikarjun Kharge, who remember, has called for this specific lunch. So the India bloc will assemble over here. And you know, Shivani, it remains to be seen what happens, because yesterday when the lunch was called at Sagar Ratna, shortly after that we saw the member parliaments get into buses and, you know, organize themselves to in fact stage a demonstration. So it remains to be seen whether the demonstration happens or not. But I'm going to be very curious to see what happens at lunch. Is it just, you know, about food, or is it more than that? Is it about strategizing on how to take this forward? Remember that the opposition is constantly protesting against the Chief Election Commissioner Ghanesh Kumar, demanding his resignation. So upping the ante against the Chief Election Commissioner, we are seeing the opposition. It is called for yet another lunch at the National Capital. This is the Mohit's restaurant in Connaught Place's Outer Circle. And in lieu of the member parliaments coming here, the security has also been beefed up. I'm going to ask my camera person to show you what it's looking like on ground zero. So there is police personnel present over here. There's also immense barricading that has been done, and they've tried to cordon off the entire area. Now the restaurant is also not seeing any public access. Now nobody is really allowed to go inside. Remember that the restaurant is also preparing to host these member parliaments. They have been asked to, they've been given the deadline of 12 p.m. by which they are supposed to make all the arrangements. So like I said, it remains to be seen whether it will just be about food or way more than that, whether there will be a demonstration that will occur after they have the lunch at this very place. Back to you.
3: All right, thank you, Reet. We'll come back to you for more updates from the restaurant where the opposition leaders are supposed to meet. The security has been beefed up, and we'll continue to bring you coverage on that. For now, NDTV's Padmaja Joshi has exclusively spoken to BJP MP Ravi Shankar Prasad. Listen in.
10: How does the government weather this storm? And they're saying, we'll continue to hit the streets. We will not stop. We'll be there at Jantar Mantar. We'll be there at Shivaji Park. हम सड़कों पे रहेंगे।
11: अच्छा, कोई पीएम का इस्तीफा पहली बार मांग रहे हैं क्या? Did they not trouble him as a Gujarat chief minister and repeatedly rebuffed by the people? Mr. Modi will stand tall, Padmaja, because he's there not because of charity of a family. He's there because of popular support, repeatedly winning elections after election. But now coming to this whole, we will keep on coming to the streets. Let me give you a quick analogy. Recently, some parties in Mumbai did a dharna against the election commission. They went in a procession, held their meeting for 2 hours and

0: शो के बाद कोई मिल ही नहीं सकता है। लोगों की तालियां बज रही थी, स्टैंडिंग ओशन मिल रहे थे, मगर विंग में आते ही पता चला कि नाना पाटेकर नहीं रहे। इट्स टेरिबल, इट्स नॉट फेयर।
1: Oh, no, you can't compare him with anybody else. He's one of the finest actors, I think, not just India, but the world has produced. And a man, a 100% gentleman, one of the finest actors, and a man with a sense of humor, and really a golden heart. He was a very, very kind man and very honest. And I had the privilege of working with him in a movie. And he loved the line which said, we did a music video in the movie, actually. It says, apni kismat ka tu hai God, zindagi hai bais gaz ki daud, bat ko rakha le, rakh chipka, ran to bana le par wicket bacha. And he would always say, that's what I'm trying to do, wicket bachane ka. And we'd all laugh in the vanity van together. And on behalf of everybody, I'd like to say, we're all really, really sad about this terrible void that has been created by his. Oh, no, you can't compare him with anybody else. He's one of the finest.
2: सब सारी memory हैं मेरे दिमाग में, दिलों में. One can I say about him कि like actor, Nana Sahab and personality, we all are going to. He enjoyed. Character and he's very very capable. He was very very capable. जब acting करते थे और जब वो पर्दे पे आते थे तो लगता था कि क्या what a reality, क्या real acting कर रहे हैं, मतलब मजा आ जाता था यार.
3: इससे ज्यादा shocking कोई खबर हो ही नहीं सकती. ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि नाना पाटेकर दिल के दौरे पड़ने से चले गए. इतना फिट आदमी, इतना कंप्लीट मेंटली फिजिकली वेरी स्ट्रांग, नपातुला खाते थे, एक्सरसाइज करते थे और 75 साल की उम्र में भी बिल्कुल बिल्कुल फिट थे, 100% फिट थे. उन्होंने जिंदगी अपने हिसाब से जी, उन्होंने काम अपने हिसाब से किया.
4: मुझे सुबह 7 बजे अभी भी मैसेज पता चला कि कम कम कर रहे हैं, फिर पुराने शूटिंग कर रहे हैं. तो मुझे गोवा में आया, देखा तो सच न्यूज़ है. मुझे भरोसा नहीं था कि ऑन न्यूज़ दिया है, सच न्यूज़ है.
5: ग्रेट एक्टर, महान एक्टर, गुरुओं के गुरु, हम मिमिक्री वालों के तो गुरु. आज गुरुवार के दिन नाना पाटेकर साहब शारीरिक रूप से दुनिया से चले गए हैं. हालांकि उनका महान कार्य एक्टिंग के जरिए, डायरेक्शन के जरिए, राइटिंग के जरिए हमेशा जिंदा रहेगा, हमें प्रेरणा देता रहेगा. जो सचमुच एक फिल्म इंडस्ट्री का तो नुकसान है ही, समाज का भी नुकसान है. नाम का फाउंडेशन उन्होंने बनाया था और चुपके से अपनी फिल्मों की जितनी पेमेंट थी उसकी वो सेवा करते थे किसानों के लिए, और सीनियर की इज्जत करते थे, सीनियर के पैर छूते थे, पैर दबाते थे, और जूनियर को बहुत प्यार करते थे.
2: सच अ सैड न्यूज, माय गॉड. और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं आई वाज गोइंग टू आई वेंट टू फ्रॉम गोवा आई वेंट टू बेलगांव बेलगावी एंड ऑन द वे बड़े एक आइसोलेटेड एक जगह पे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ नाना पाटेकर जी का घर है, और वो बिल्कुल ही एक अलग सॉलिट्यूड में ही घर था, एकदम से लोनली था. तो मुझे बस यही ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं है कि उनका जब उनको हेल्प चाहिए थी तो नहीं मिल पाई, ऐसा तो पता नहीं, यू नो, या दूर था बहुत. मुझे ऐसा मेरी फीलिंग आ रही है, बिकॉज उनका घर मैंने देखा था बाहर से, तो काफी अलग से दूर से हटके जगह पे था वो थोड़ा सा. तो आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म विद हिम एंड माय तिरंगा, आई हैव गॉट वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट फिल्म विद हिम.
6: Nana Patekar's cinematic legacy spans over 4 decades, from Gaman and Parinda to Krantiveer, Welcome and Nat Samrat. 3 national awards, 4 Filmfare awards and the Padma Shri, a career defined by unforgettable characters, powerful dialogues and remarkable versatility. We'll tell you more in this report.
7: सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ।
8: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा?
9: आज इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को।
10: Some actors play characters and some make those characters unforgettable. Nana Patekar belonged to the second kind. His journey began with Gaman in 1978, before films like Salaam Bombay and Parinda established him as one of Indian cinema's most powerful performers. As Anna in Parinda, Patekar delivered a performance that earned him his first National Film Award. Then came Krantiveer, a film that became a defining moment of his career. His powerful screen presence, explosive dialogue delivery, and unforgettable monologues turned the film into a landmark. For Krantiveer, Patekar won both the National Film Award for Best Actor and the Filmfare Award for Best Actor. He went on to win another National Award for Agni Sakshi. From the intensity of Prahar and Ab Tak Chhappan to the dark humor of Apharan and the political drama of Rajneeti, Nana Patekar repeatedly proved his versatility. And then came Welcome, where his portrayal of Uday Shetty showed that the same actor known for intense drama could also own comedy. His voice became iconic too, as Sher Khan in The Jungle Book. Beyond acting, Patekar directed Prahar, The Final Attack, and delivered a celebrated performance in the Marathi classic Nat Samrat. 3 National Film Awards, 4 Filmfare Awards, and the Padma Shri in 2013. For generations of audiences, Nana Patekar was more than a star. He was a performer whose voice, characters, and dialogues became part of Indian cinema's memory.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: In news just coming in, the Parvesh Verma assault allegations case has now reached the Delhi High Court. The court has sought a response from the Delhi police on a petition filed by Aam Aadmi Party worker Sahib Singh, who has accused the Delhi PWD Minister Parvesh Verma and his associates of assaulting him during a road inspection in Tilak Nagar on the 27th of September. The judge issued a notice on the plea and directed the Delhi police to file a status report. Shishi Ojha now joins me live. Shishi, we've also heard that the counsel for the Delhi minister has said that this petition is not maintainable. What details can you share with us?
1: Yes, you're talking about the recent incident where an Aam Aadmi Party worker alleged that he was assaulted by Delhi.
0: All right, we're going to try and reconnect with Shrishti there. There seems to be a problem with the line. But if you remember, in his petition, Sahib Singh had sought protection for himself and his family, preservation of CCTV and electronic evidence, and an independent probe into the alleged assault, threats and police inaction. He claims he was accompanying Tilak Nagar MLA Jarnail Singh during an inspection when he was allegedly slapped, abused, threatened and assaulted while recording the proceedings on his mobile phone. The petition also alleges that his phone was forcibly taken and damaged and that police personnel present at the spot failed to intervene. Singh further claims he has received threatening calls and messages since filing complaints and has sought a cyber forensic investigation into their source. That's the latest that we have for you from the Delhi High Court. In the latest, in the showdown between the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and the India Bloc, an FIR has been registered against Rahul Gandhi and his sister, an MP Priyanka Gandhi. The Delhi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and all their leaders and workers. The FIR has been registered for assaulting the police. We have the BJP spokesperson speaking. Let's cut across.
2: Har nagrik ne gaurvanvit mehsoos kiya. Adaniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ne संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए देशवासियों की सेवा पिछले 25 साल में संवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में करी है। यह सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। संवैधानिक मूल्य, जनता की सेवा और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष संविधान की हत्या करते हुए अराजकता का माहौल बना रहा है और यह कहना गलत नहीं होगा जो सारे आरोप राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है लेकिन आधार क्या है these baseless allegations being leveled by an irresponsible anarchist opposition destroying the constitution has no base not an iota of evidence and what I wish to place before you is a judgment of the Honorable Supreme Court where the Honorable Supreme Court has ordered a re-poll in 50 wards in Punjab. Maniye Sarvoch Nyalye ki teen judges ki khandpeet ne एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है और फैसले में बड़ी स्पष्टता से जो बातें कही हैं वो आपके समक्ष रख रहा हूं 50 जो वार्ड हैं यहां पे जो म्युनिसिपल चुनाव हुए थे उसे रद्द किया है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तथ्य और बड़ी स्पष्टता से सर्वोच्च न्यायालय भारत का यह कहता है कि जो पार्टी स्वराज का नारा लेकर राजनीति में कूदी थी पापी आप, वो आज गुंडा राज वाली पार्टी बन गई है। मैं सबसे पहले इसी आदेश में से कुछ तथ्य रखते हुए बताना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। ये सिविक बॉडी पोल्स जो हुए मई 2026 अभी का मामला है, इसमें 50 वार्ड 28 पटियाला जिले में और 22 मोगा जिले में, इनमें जो चुनाव हुए जिसकी जिम्मेदारी प्रमुखता से प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान की थी, वहां पर जो तथ्य सामने आए उन तथ्यों का संज्ञान लेके सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले रिटायर्ड जज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ऑनरेबल मिस जस्टिस निर्मलजीत कौर, इनको अपॉइंट किया वन मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाकर। इस कमीशन ने सारी जितनी शिकायतें आई थी उसका अध्ययन किया और उसके बाद जो बातें फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी है वो लोकतंत्र को शर्मसार करती है। एंड इट कैन बी वेरी सेफली सेड ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी headed by a former judge of the Punjab and Haryana High Court, that Papi Aap and its goons murdered democracy in Punjab. This is what democracy is dead would mean. And I must point out, jo Sarvoch Nyayalaya ne ingit kiya hai, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पढ़ रहा हूं, द प्रिंसिपल फाइंडिंग ऑफ द कमीशन इज ऑफ वाइड स्प्रेड ऑब्स्ट्रक्शन। हर जगह जो और पार्टियों के कैंडिडेट थे, निर्दलीय कैंडिडेट थे, उन पे रोक लगाना, जबरदस्ती करना, उनको प्रताड़ित करना कि वो पर्चे नहीं भर पाए, अपने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए, नॉमिनेशन फॉर्म हाथ से छीन कर उसको फाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये बात कमिटी ने लिखी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिपोर्ट को स्वीकारा। तो ये पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, ये पापी आप कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिखाया है। द प्रिंसिपल फाइंडिंग ऑफ द कमीशन इज ऑफ वाइड स्प्रेड ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द नॉमिनेशन प्रोसेस वेयर बाय नॉमिनेशन पेपर्स वर स्नैच्ड टॉर्न और डिस्ट्रॉयड, पहली बात। दूसरा, एंड कैंडिडेट्स वर असोल्टेड डिटेन्ड एंड थ्रेटेंड, कैंडिडेट्स को मारा गया, उनको जबरन डिटेन किया गया और उनको धमकाया गया। रिगार्डिंग द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटियाला द कमीशन फाउंड द इलेक्शंस इन 13 वार्ड्स वार्ड नंबर सो एंड सो विशिएटेड बिकॉज ऑपोजिशन कैंडिडेट्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशंस। मतलब इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो पापी आपके गुंडे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कैंडिडेट्स को पर्चा तक नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने नहीं दे रहे थे। इसी तरह से पटियाला धर्मकोट बागा पुराना यहां पे बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है इलेक्शंस विशिएटेड ड्यू टू फोर्सिबल प्रिवेंशन ऑफ नॉमिनेशंस कोअर्सिव विड्रॉल ऑफ रॉन्गफुल रिजेक्शन। बागन बागा पुराना में इट फाउंड द इलेक्शंस टू ऑल 15 वार्ड विशिएटेड एज ऑपोजिशन कैंडिडेट्स वर सिस्टमैटिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशंस। नॉमिनेशन भी नहीं भर सकते थे प्रत्याशी। अब जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है वो बड़ा आवश्यक है। In aggregate, the commission found 50 ward elections to be vitiated and deserving of being set aside. 28 in district Patiala and 22 in district Moga. इसके बाद इस रिपोर्ट को स्वीकारा एक्सेप्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इन सभी 50 वार्ड में पुनः इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें एक बात और चिंतित करने वाली है, जैसा मैंने अभी बताया कि म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए जिम्मेदारी प्रमुखता से प्रदेश सरकार की होती है। प्रदेश सरकार पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह स्पष्ट हो गया है किस तरह से नॉमिनेशन नहीं भरने दिया, एक कैंडिडेट्स को मारा, नॉमिनेशन फॉर्म्स को फाड़ दिया गया, धमकी दी गई,

0: प्रदेश सरकार भगवंत मान की सरकार का वकील सर्वोच्च न्यायालय में यह नहीं कह रहा कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये गलत हैं, वो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं कैंडिडेट्स को नहीं धमकाया गया, वो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं पर्चा भरने का अधिकार हर कैंडिडेट के पास था और सरकार प्रतिबद्ध थी कि सबकी सुरक्षा करे और संविधान का पालन करे। वो कहता है हमें कोई आपत्ति नहीं है इन 50 वार्ड में पुनः इलेक्शन करवा दिया जाए। ये होता है मर्डरिंग द डेमोक्रेसी।
1: बीजेपी देयर टेकिंग ऑन बोथ द कांग्रेस एज वेल एज द आम आदमी पार्टी, द आम आदमी पार्टी इन टर्म्स ऑफ पंजाब एंड राहुल गांधी for the showdown that continues in the national capital against the chief election commissioner. Like I said at the beginning, before we tossed to that press conference, the Delhi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and all their leaders and workers. The FIR has been registered for assaulting the police, obstructing government work, pushing and misbehaving with them during the Congress protests in the New Delhi area yesterday. Some reactions coming in.
2: अभी क्या कोई विरोधी दल के नेता ने ऐसा व्यवहार किया चुनाव आयोग के लिए? वो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, और बदनाम करके और लोकतंत्र जो इतना जीवंत लोकतंत्र है भारत में उसको भी वो बदनाम करना चाहते हैं।
3: कांग्रेस पार्टी का व्यवहार बिल्कुल अर्बन नक्सलियों जैसा हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियोस के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के जवान को लातों से मारने का प्रयास कर रहे हैं, मार रहे हैं। राहुल गांधी खुद महिला पुलिस अधिकारियों को धक्का दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा खुद महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स को धक्का देने का प्रयास कर रही है। कल हमने देखा कि एक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी फैक्शन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुलिस कर्मी को दांतों से काटने का हरकत कर रहे हैं। ये सब यही पॉइंट करता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग एनार्की और अर्बन नक्सली व्यवहार सड़कों पर दिखा रहे हैं। अगर इनका मकसद लोकतंत्र बचाना होता तो ये लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करते हैं, परंतु इनका मकसद लोकतंत्र बचाना नहीं परिवार बचाना है।
4: Will any decent individual, let alone a member of parliament or leader of opposition, behave in such an inappropriate manner with a woman, that too a female police personnel? What kind of message is Rahul Gandhi trying to convey to the woman of India or Nari Shakti with such crude and improper conduct? On one hand, Rahul Gandhi has the audacity to lecture about smash the patriarchy, and on the other hand, he engages in such indecent behavior. Disgrace on Rahul Gandhi for insulting the dignity of a woman, and if he has any sense of shame or guilt left, Rahul Gandhi should apologize immediately.
5: आरोप है कि पुलिस वालों के साथ भी काफी धक्का मुक्की हुई, उनको भी काफी चोटें आई हैं और इस पूरे मामले को लेकर 3 FIR दर्ज हो गए।
6: सबने देखा है, नेता प्रतिपक्ष जिनका कैबिनेट रैंक होता है, जो 5वीं बार लोकसभा के सदस्य, उनके साथ जिस तरीके से पुलिस धक्का मुक्की कर रही थी, जिस तरह उनको घसीट रही थी, जिस तरह उठा रही थी, परसों भी कल भी, ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं रह गया, राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रह गया, बात अपनी कहने का अधिकार खो गया है, और जो बोल रहा है उससे साथ नृशंसता हो रही है। मोदी सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई।
5: राहुल गांधी का एक वीडियो बीजेपी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने महिलाओं के जो पुलिसकर्मी महिला थी उनके साथ धक्का मुक्की की और गलत व्यवहार किया।
6: पुलिसकर्मी वहाँ क्यों होगी? राहुल गांधी के लिए जहाँ तक सवाल है, जब पुलिस बर्बरता करती, नृशंसा करती है, वहाँ पर धक्का मुक्की होती, तो किसको कहाँ धक्का लगा ये अलग बात है। हम अपनी तरफ से दृढ़ता से खंडन करते हैं, परंतु राहुल गांधी के साथ ये व्यवहार, इसलिए आकाशवाणी में नहीं बैठने देंगे, कल जंतर मंतर में गए वहाँ नहीं बैठने देंगे। तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब दो आखिर। हम

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
2: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने लाख से भी ज्यादा डूड
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: It is the size of an elevator perhaps, and there's a kitchen, and of course everything is in this one room, and this is where they sleep, this is where they cook, this is where they eat, and of course this is how difficult conditions are. So madam, aap kitne saal se yahan pe reh rahe
1: hain? Main 35 saal se sir.
0: 35 saal se?
1: Ji ji.
0: Kya pareshani hai rehne mein, Dharavi mein?
1: क्या पानी गली में भर जाता सर, आग लग जाता, आग का डर है, और बाथरूम की तकलीफ है सर, एक एक घंटा नंबर लगाओ तो उसमें कीड़े आते हैं पानी में, और शाम को 6 बजे वह पानी पी नहीं सकते, खाना कम खाते हैं, ऐसा मतलब बहुत तकलीफ है, बाथरूम की तो ज़्यादा है और गंदगी गली गली में बहुत है।
0: यही घर है आपका? इतना ही
1: बस, इतना ऊपर नीचे बस यही है सर। इतने में हम लोग 7 जन रहते हैं सर।
0: कितने लोग?
1: 7 जन।
0: 7 जन?
1: 4 बच्चे।
0: इस घर का साइज क्या है?
1: ये साइज कुछ 4x10 का। तो बहुत खुशी हो रही है कि कब मिले, कब जाने का,
0: कब जाने का।
1: बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हम लोग की तकदीर पलट दिया, और जो दे रहा है अल्लाह उसको अच्छा रखे, जो दे रहे हैं उनको बहुत अच्छा रखे, यही दुआ निकलती है, हमारे बच्चे सुकून से रह लेंगे।
0: एक घर में अपना टॉयलेट होना, 2 टॉयलेट है घर में, और बेडरूम है, बड़ा किचन है, तो एक तरीके से आपको लगता है कि जिंदगी में एक नई जिंदगी?
1: नई जिंदगी हम तो नहीं जी पाए, हमारे बच्चे भी, उनके बच्चे जी लेंगे अच्छे, तो हम बुढ़ापे में देख सकते हैं कि हमारे बच्चे की लाइफ चेंज हो गया।
0: एक तरीके से आपने आपके बच्चों को एक गिफ्ट तो देके गए?
1: गिफ्ट देके गए, ये तो याद, वो याद करेंगे। वो मेरी बहू जो है ना, वो भी बोलती है मोबाइल में देखती, बोलती है फुप्पी बहुत अच्छा मिलने वाला है, फुप्पी बहुत मेरी बहू, तो मैं एकदम खुश हो जाती, मैं तो इतना जानकारी नहीं, वो बोलती है तो मेरे जो दे रहे हैं उनको अल्लाह अच्छा रखे, जो हम लोग को दे रहे हैं, मतलब दिल से ना एकदम नस नस दुआ देती है।
0: ये घर में आप कितने साल से रह रहे हैं, और क्या इतना ही आपका घर है?
2: नहीं, मेरा घर यहाँ से वहाँ रोड कटिंग तक गए।
0: हाँ।
2: तो रोड कटिंग में आधा जगह गया, आधा जगह गटर में गया।
0: हाँ।
2: तो इतना ही जगह बता बच्चा, तो मैं इसमें से खुश है इतना जगह में।
0: क्या तकलीफ होता है इस छोटे से घर में रहने के लिए? ये तो इसको ये कमरा भी एक पूरा नहीं है।
2: नहीं है पूरा कमरा, पर क्या करेगा, अभी रहने को मेरा कोई दूसरा घर नहीं है, मेरा यही सहारा है एक, तो कैसा भी गुजारा करना ही पड़ता है ना सर। और गर्मी में देखो इतना तकलीफ है, देखो मशीन रखी है, अस्थमा पेशेंट हो, हफ्ते में 2 महीने, साल में 2 बार 3 बार भर्ती होना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है।
0: क्योंकि धारावी में कहा जाता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, क्योंकि यहाँ के जो चैलेंजेस हैं इस कंडीशन में रहने के लिए, लोगों की अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है जैसे आपने कहा। लेकिन कितने साल से आप हैं यहाँ पे?
2: मैं 38
0: 38 साल
2: हो गए मुझे यहाँ पे।
0: अच्छा।
2: हाँ।
0: तो एक चीज़ मुझे बताइए, क्या आपने क्या होने वाला है उसे देखा है?
2: अभी नेट में वो दिन तो घर देखे बताए हैं पंडित जी ने, नेट में समाचार देखते ना तो बताए घर, तो घर तो देख के बहुत खुशी हो गई, पसंद आ गए घर।
0: कैसा लगा घर?
2: अच्छा लगे, हम भी सोचते कि ऐसा घर हमको भी मिले। अभी मिलेगा नहीं तब तक हम नहीं बोल सकते कि हमारा चाहे करके,
0: लेकिन मिलेगा ये जरूर आश्वासन।
2: लेकिन अभी आश्वासन है कि मिलेगा, पक्का मिलेगा। अभी
0: बहुत सारे अफवाहें होते हैं, लेकिन आज आपने देख लिया कैसे कर?
2: हाँ देख लिया, देख लिया मैंने, देख लिया नेट पे, देखती है ना रोज समाचार देखती है मैं। क्या
0: कभी सोच सकते हैं कि यहाँ से वो 350 स्क्वायर फीट के घर कैसा? हाँ। एक घर क्या होता है वो देख के लगा होगा कि यही जिंदगी होनी चाहिए?
2: नहीं, अभी ऐसा सोचता है कि अभी इतनी हमारी जिंदगी खराब गई, अभी तो अच्छा दिन जाए, जो जीना है 2-5 साल तो वो तो हमारा अच्छा चले जाए।
0: अच्छे दिन आखिर आ रहे हैं,
2: आ जाए, अरे आ जाएगा अभी
0: बस।
2: हाँ, अभी तो विश्वास नहीं, अपन अभी विश्वास हो रहा है कि अभी हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे।
0: तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि आखिर में जो हम एक तस्वीर देखे हैं वो रियलिटी में बदल रहा है?
2: बदलेगी, अभी बदलेगी, अभी इसमें कोई शंका नहीं है,
0: बदलेगी धारा।
2: हाँ पक्का 100% बदलेगी अभी।
0: फ्रॉम दीज नैरो गलीज विद नो सनलाइट एट ऑल to spacious, airy homes. This is not just the transformation of Dharavi. It's something that not only Mumbai, but India will be proud of, because so many people who are packed into what was so far known as Asia's largest slum will finally be living in an urban habitat that's spacious, well-lit, airy, and above all, sustainable, not just for their livelihoods, but also for their health as well. From the bylanes of Dharavi, with camera person Rajendra Dayalkar, Saurabh Gupta, NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सैनिको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: Launch control, 0 to 100.
1: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
2: This car makes no sense, yet it makes every sense.
1: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
3: Welcome back, you're watching NDTV. A week after the Fly Dubai incident, Captain Smith is recovering well. Smith's wife has said that the captain is recovering well and has revealed that he walked 10 steps yesterday. The development comes as India and Oman held their first talks on the incident. Oman's ambassador to India met officials at the Ministry of External Affairs, with sources telling NDTV that the actions of the co-pilot Hammam al-Hammami were likely discussed. Meanwhile, questions are also being raised over the past red flags surrounding Hammami and whether they were ignored. And now the extraordinary story of the passenger who became Captain Smith Machar's lifeline, Israeli dentist Shota, rushed to the cockpit after hearing screams, helped restrain the attacker, and then spent nearly 45 minutes treating Smith's severe injuries and keeping him conscious.
4: Well, one of the heroes on board the Fly Dubai flight was the dentist, Dr. Shota Mosayev, who actually saved the life of Captain Machar on board that aircraft, Captain Smith Machar, the Indian pilot. He was also one of the group of passengers on that aircraft who actually went towards the cockpit, entered the cockpit, and had a full idea of what really took place. I'm now joined by Dr. Shota Mosayev. Thank you very much, Dr. Mosayev, for joining us. And Dr. Mosayev, can I just say, your courage, your heroism, your ability to help the life of Smith Machar, really, we are all in awe of that. And thank you, sir, for your bravery and your ability. My first words to you, sir.
5: Thank you. Thank you very much. I'm Dr. Shota Mosayev, and I think Smith, Pilot Smith, it's a really, really hero. I do only regular process. And the heroes, it's Smith and Yaniv and everyone in the plane. You understand? Yes, in the plane, it's a very, very big panic, and we go down. And Smith opened the door after he have deep, very, very deep clothes and. I think Smith, it's very, really hero.
4: Okay. So doctor, tell me now, what exactly happened? When did you enter the cockpit?
5: I know into the cockpit. I entered the exit. It's a little before the cockpit. When I come to this area, when I run to this area, I see Smith on the floor and terrorists, sit on the other side. And I remember I check everyone in the Yaniv and everyone with blood, with t-shirt blood. And after I see, I check it, it's everything was normal. I start help to Smith. Smith have very, very, was have very deep cuts in the hand, in the head. And very more blood, and I start help to Smith, to pilot.
4: Dr. Mosayev, was his pulse very weak?
5: Excuse me, I don't listen to you.
4: His pulse rate, was it very low? Smith's pulse rate?
5: Yes, pulse, it's very low. And in the one moment, it's very down. And I said to other men and Yaniv, we need to go up foods. And after pulse was standard.
4: Dr. Mosayev, if you were unable to lift his legs, and increase his pulse, do you think it would have been a struggle for Captain Smith Machar to have survived?
5: I think Captain Smith is a very strong man, and without this, it's real life.
4: How low was his pulse rate?
5: I think if he not was go down in the Saudia, we was have not more time for the blood, and after the shock he said to me sometimes he have some many pains in the head, in the hand. I think was a very difficult situation for Smith.
4: Doctor, what was Smith telling you?
5: He want life. He want back to her family. We talk about his family, where he live. He have two. He said me he have two children. He is 38 or 39 old, and live in Dubai. And you know, this time every time I told about times, we need only 5 minutes, 3 minutes. And I think this moment, it's very, very important for the patient talk and say something normal, something better for him.
3: All right, shifting our focus now, a major loss for Indian cinema this morning. Veteran actor Nana Patekar has passed away at the age of 75. Nana Patekar will be accorded a state funeral at 4 p.m. today, recognizing his extraordinary contribution to Marathi theatre, Marathi cinema and Hindi cinema. PM Modi pays tribute to Nana Patekar and praised his immense contribution to Hindi and Marathi films. Known for his intense and powerful performances, Nana Patekar carved a unique place for himself in Hindi and Marathi cinema. From Parinda and Krantiveer to Ab Tak Chhappan, Welcome, Rajneeti and Nat Samrat, his performances left a lasting mark. He was the only actor to win Filmfare Awards for Best Actor, Best Supporting Actor and Best Villain. Nana Patekar was honoured with the Padma Shri in 2013. Now, 4 days back, Nana Patekar attended his last public event in Goa, where he spoke about how little time any person is guaranteed. He said that, "I don't know whether I will be here tomorrow." Listen in.
6: जायचं आहेस, मी म्हणजे आहे नाही माहिती नाही. तुम्ही प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो एक काळ येणारच, पण त्याच्या आधी मला जे करायचं ते मी करू शकतोय का? मी प्रयत्न केले का? माझ्या पुरतं जर मर्यादित असेल, माझी मुलं, माझी बायको, माझं घर, याच्या पुरतच जगायचं असेल तर मग जग आणि मर.
7: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे. वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता. नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा. वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े. उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया. वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया. उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी. वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे. मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
8: ओ नाना पाटेकर, मेरे नाना, मेरे नाना, माय गॉड। मैंने अभी वॉशिंगटन डीसी में अपना नाटक जाने पहचाने अनजाने का शो खत्म किया और जैसे ही मैं शो से बाहर आया मुझे नाना पाटेकर के बारे में पता चला। ये तो बिलीवेबल ही नहीं है। मैं देश से हजारों हजारों मील दूर हूं और ये खबर, इस दुखद समाचार इमीडिएटली शो के बाद कोई मिल ही नहीं सकता है। लोगों की तालियां बज रही थी, स्टैंडिंग ओशन मिल रहे थे, मगर विंग में आते ही पता चला कि नाना पाटेकर नहीं रहे। इट्स टेरिबल, इट्स नॉट फेयर।
9: बहुत शॉकिंग है, जब नाना जी के बारे में सवेरे सुना बहुत ही शॉकिंग लगा ये कि नाना जी इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे इंसान, बहुत बार मुलाकात हुई इनसे, हमेशा इनकरेज करते थे, हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की इंकरेजमेंट मिलता था, और ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो, और जो कभी भी दिखाते नहीं थे। नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था, देखता था, उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से, हम देखते, चाहे मराठी फिल्म हो, मराठी थिएटर हो, उनका योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था।
10: फिल्म के अलावा भी बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके घर जाते थे, हमारा मिलना जुलना था सबका, लेकिन बहुत दुख है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट में मिला एक अच्छा एक्टर, बहुत सिंपल आदमी, कपड़े पहनने से
11: मेरा साबका नाना पाटेकर के साथ रहा है और स्मृतियां अब शेष हैं। मुझे जब पहली बार जया बच्चन ने चांस दिया था फिल्म बनाने का, अभय उस फिल्म का नाम था, तो स्वर्गीय नाना पाटेकर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जब वो 65-70 लाख रुपया लेते थे एक फिल्म करने का, तब केवल मेरे सब्जेक्ट, कंटेंट और स्क्रिप्ट को पढ़कर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर भी, उन्होंने मेरी फिल्म अभय केवल 21,000 रुपए में की थी। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भूल सकता।
12: एक ऐसा एक्टर चला गया जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एक्टर तो बहुत होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अपनी छाप छोड़ते जाते हैं। चंद एक्टर होते हैं जो अपने आप में एक खासियत लेकर आते हैं, चाहे वो राजकुमार जानी हो, चाहे दिलीप साहब हो, राज कपूर हो, देवानंद हो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उनका। नाना पाटेकर उन एक्टरों में थे जिनकी अपनी एक खास पहचान थी। आप अगर फिल्म भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ डायलॉग सुनो उसको, क्या है, देखो मेरे यहाँ पे, देखो खून, देखो वो, देखो, आप डायलॉग सुन के बोलेंगे ओ नाना पाटेकर ही है।
13: अभी भी मुझसे पता चला कि ऐसा काम कम करने लगा, इधर इस फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं। जब मैं गोवा में आया देखा तो सच न्यूज़ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऑल न्यूज़ दिया है, सच न्यूज़ है, झूठ है।
14: ग्रेट एक्टर, महान एक्टर, गुरुओं के गुरु, हम मिमिक्री वालों के तो गुरु, आज गुरुवार के दिन नाना पाटेकर साहब शारीरिक रूप से दुनिया से चले गए हैं। हालांकि उनका महान कार्य एक्टिंग के जरिए, डायरेक्शन के जरिए, राइटिंग के जरिए हमेशा जिंदा रहेगा, हमें प्रेरणा देता रहेगा। जो सचमुच एक फिल्म इंडस्ट्री का तो नुकसान है ही, समाज का भी नुकसान है। नाम नाम का फाउंडेशन उन्होंने बनाया था और चुपके से अपनी फिल्मों की जितनी पेमेंट थी उसकी वो सेवा करते थे किसानों के लिए, और सीनियर की इज्जत करते थे, सीनियर के पैर छूते थे, पैर दबाते थे, और जूनियर को बहुत प्यार करते थे।
15: इससे ज्यादा शॉकिंग कोई खबर हो ही नहीं सकती। ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि नाना पाटेकर दिल के दौरे पड़ने से चले गए। इतना फिट आदमी, इतना कंप्लीट मेंटली, फिजिकली वेरी स्ट्रांग, नपातुला खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, और 75 साल की उम्र में भी बिल्कुल

0: बिल्कुल फिट थे, 100% फिट थे। उन्होंने जिंदगी अपने हिसाब से जी, उन्होंने काम अपने हिसाब से किया।
1: Those tributes capture the impact Nana Patekar had not just as an actor but as a voice and a presence that stayed with audiences for decades. A towering career comes to an end but the performances and the legacy still remains. From intense drama to unforgettable comedy, Nana Patekar had a way of making every word count. His powerful delivery turned dialogues into memories that stayed with the audience for generations. Let's now revisit some of Nana's most iconic dialogues and screen moments.
2: सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका।
3: दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। देख, बीवी बच्चे का श्राद्ध किया, क्या नहीं था उसके पास, पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था, बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला, हम क्या किया, देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ के?
4: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
2: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से, कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों को बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, यू नो।
3: समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आजकल लोग।
5: इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को। इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है।
4: मौत का तमाशा देखने आप मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
6: आलो, ले लो, कांदे, ले लो।
1: Nana Patekar's cinematic legacy spans over four decades, from Gamaan and Parinda to Krantiveer, Welcome and Nat Samrat. Three national awards, four Filmfare awards and the Padma Shri, a career defined by unforgettable characters, powerful dialogues and remarkable versatility. We tell you more on this report.
2: सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ।
4: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा।
5: इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को।
7: Some actors play characters, and some make those characters unforgettable. Nana Patekar belonged to the second kind. His journey began with Gaman in 1978, before films like Salaam Bombay and Parinda established him as one of Indian cinema's most powerful performers. As Anna in Parinda, Patekar delivered a performance that earned him his first National Film Award. Then came Krantiveer, a film that became a defining moment of his career. His powerful screen presence, explosive dialogue delivery, and unforgettable monologues turned the film into a landmark. For Krantiveer, Patekar won both the National Film Award for Best Actor and the Filmfare Award for Best Actor. He went on to win another national award for Agni Sakshi.

0: From the intensity of Prahar and Abtak Chappan to the dark humor of Apharan and the political drama of Rajneeti, Nana Patekar repeatedly proved his versatility. And then came Welcome, where his portrayal of Uday Shetty showed that the same actor known for intense drama could also own comedy. His voice became iconic too, as Sher Khan in The Jungle Book. Beyond acting, Patekar directed Prahar, The Final Attack, and delivered a celebrated performance in the Marathi classic Nat Samrat. 3 National Film Awards, 4 Filmfare Awards, and the Padma Shri in 2013. For generations of audiences, Nana Patekar was more than a star. He was a performer whose voice, characters, and dialogues became part of Indian cinema's memory.
1: Nana Patekar had spoken exclusively to NDTV in an earlier interview, sharing his thoughts on cinema, life, and his journey as an actor. As we remember the legendary performer, let's look back at that conversation and hear Nana Patekar in his own words.
2: बात ये है कि देखा नहीं है उन्होंने, उनको मालूम नहीं, उनको जो सिर्फ फोटोज आते हैं और टीवी पे कुछ दिखता है, यहाँ के ये सहना है ना, ये आसमान के नीचे, तब पता चलता है यहाँ क्या चल रहा है। अब तो तू पूरा दिन मर बटकेगा, लेकिन कहीं तो अच्छे होटल में दो का खाना खाता है, पानी पीता है, आराम की नींद सोता है, फिर सुबह उठता है। उनको देखो यार, उसके सिवा तो उसके नीचे और वही कुछ है ही नहीं। जानवर है मेरे, गाय है, भैंस है, बैल, उनको मैं कुछ दे नहीं पाता जो मेरे लिए उगाते थे। अब उनको देखना पड़ता है, उनको पानी नहीं दे पाता मैं। मेरा बाप बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, बीवी बीमार हो गए, उनकी दवाइयों का खर्चा कर नहीं सकता, क्योंकि इतनी महंगी दवाई है। खेती का जितना खर्चा उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारी दवाइयाँ हैं। करें क्या यार, फांसी क्यों ना लगाऊं मैं? बच्चे खाना मांग रहे, मैं दे नहीं पाता बाप होने के नाते, माँ बाप को दवा, बच्चा होने के नाते कुछ नहीं कर सकता, मर्द होने के नाते बीवी को कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर सोचता हूँ यार, ये मैं कैसे सहूं? फिर एक वो रस्सी है, डाल देता हूँ अपने गले में। एहसास है अकेलेपन का, वो तकलीफ देता है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
3: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
2: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव. दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस. व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
5: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
6: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
7: Marne se bada kya hoga?
6: As a journalist, I can say you're not alone.
4: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's that to me? How?
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else.
10: Welcome back. You're watching NDTV. A major loss for Indian cinema this morning. Veteran actor Nana Patekar has passed away at the age of 75. Nana Patekar will be accorded a state funeral at 4 p.m. today, recognizing his extraordinary contribution to Marathi theatre, Marathi cinema and Hindi cinema. PM Modi pays tribute to Nana Patekar and praised him his immense contribution to Hindi and Marathi films. Known for his intense and powerful performances, Nana Patekar carved a unique place for himself in Hindi and Marathi cinema. From Parinda and Krantiveer to Ab Tak Chhappan, Welcome, Rajneeti and Nat Samrat, his performances left a lasting mark. Now, he was the only actor to win Filmfare Awards for Best Actor, Best Supporting Actor and Best Villain. Now, Nana Patekar was also honoured with the Padma Shri in 2013. Just 4 days back, Nana Patekar attended his last public event in Goa, where he spoke about how little time any person is guaranteed. He said that, "I don't know whether I will be here tomorrow." Listen in.
11: जायचं आहेस, मी उद्या आहे, नाही माहिती नाही. तुम्ही प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो एक काळ येणारच, पण त्याच्या आधी मला जे करायचं ते मी करू शकतोय का? मी प्रयत्न केले का? माझ्या पुरता जर मर्यादित असेल माझी मुलं, माझी बायको, माझं घर याच्या पुरताच जगायचं असेल तर मग जग आणि मर.
7: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे. वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता. नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा. वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े. उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया. वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया. उनकी वाणी जितनी तेज थी उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी. वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे. मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.
12: ओ नाना पाटेकर, मेरे नाना, मेरे नाना, माय गॉड. मैंने अभी वॉशिंगटन डीसी में अपना नाटक जाने पहचाने अनजाने का शो खत्म किया और जैसे ही मैं शो से बाहर आया मुझे नाना पाटेकर के बारे में पता चला. ये तो बिलीवेबल ही नहीं है. मैं देश से हजारों हजारों मील दूर हूं और ये खबर, इस दुखद समाचार इमीडिएटली शो के बाद कोई मिल ही नहीं सकता है. लोगों की तालियां बज रही थी, स्टैंडिंग ओशन मिल रहे थे, मगर विंग में आते ही पता चला कि नाना पाटेकर नहीं रहे. इट्स टेरिबल, इट्स नॉट फेयर.
13: बहुत शॉकिंग है. जब नाना जी के बारे में सवेरे सुना बहुत ही शॉकिंग लगा ये कि नाना जी इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे इंसान. बहुत बार मुलाकात हुई इनसे, हमेशा इनकरेज करते थे, हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की भी इनकरेजमेंट मिलता था. और ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो, और जो कभी भी दिखाते नहीं थे. नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था, देखता था, उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से, हम देखते थे, चाहे मराठी फिल्म हो, मराठी थिएटर हो. उनका योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था.
14: उनके अलावा भी बहुत अच्छे दोस्त थे. हम उनके घर जाते थे, हमारा मिलना जुलना था सबका. लेकिन कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट में मिला एक अच्छा एक्टर, बहुत सिंपल आदमी, कपड़े पहनने से सबसे
15: मेरा साबका नाना पाटेकर के साथ रहा है और स्मृतियाँ अब शेष हैं. मुझे जब पहली बार जया बच्चन ने चांस दिया था फिल्म बनाने का, अभय उस फिल्म का नाम था, तो स्वर्गीय नाना पाटेकर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जब वो 65-70 लाख रुपया लेते थे एक फिल्म करने का, तब केवल मेरे सब्जेक्ट, कंटेंट और स्क्रिप्ट को पढ़कर मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर भी. उन्होंने मेरी फिल्म अभय केवल 21,000 रुपए में की थी. ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भूल सकता.
16: एक ऐसा एक्टर चला गया जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है. एक्टर तो बहुत होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, अपनी छाप छोड़ते जाते हैं. चंद एक्टर होते हैं जो अपने आप में एक खासियत लेकर आते हैं, चाहे वो राजकुमार जानी हो, चाहे दिलीप साहब हो, राज कपूर हो, देवानंद हो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उनका. नाना पाटेकर उन एक्टरों में से जिनकी अपनी एक खास पहचान थी. आप अगर फिल्म भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ डायलॉग सुनो उसको, क्या है, देखो मेरे यहाँ पे, देखो कौन, देखो वो, देखो, आप डायलॉग सुन के बोलेगे ओ नाना पाटेकर ही है.
17: सुबह 7 बजे अभी भी मेरे से पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो मैं कम कम करने लगा, इधर इस प्रकार में शूटिंग कर रहा है। तो मुझे अपने गोवा में आया, देखा तो सच न्यूज़ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऑन न्यूज दिया है, सच न्यूज है, झूठ है।
18: देखिए मैं इनके लिए एक लाइन बोलूँगी, पुनः

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: moment first.
1: तब मेरे पति उस शाम की यादें सुनाते थे तो उनके अनुभवों को सुनकर मेरे मन में भी वाराणसी आने की इच्छा हुई।
0: Thanks for watching. All news, more news and updates coming in. Keep watching.

0: about how little time any person is guaranteed. He had said that, "I don't know whether I will be here tomorrow." Take a listen.
1: जायचं आहेस, मी म्हणजे आहे नाही माहिती नाही. तुम्ही प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो एक काळ येणारच, पण त्याच्या आधी मला जे करायचं ते मी करू शकतोय का? मी प्रयत्न केले का? माझ्या पुरता जर मर्यादित असेल, माझी मुलं, माझी बायको, माझं घर, याच्या पुरताच जगायचं असेल तर मग जग आणि बर.
2: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे. वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता. नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा. वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े. उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया. वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया. उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी. वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे. मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.
3: ओ नाना पाटेकर, मेरे नाना, मेरे नाना, माय गॉड. मैंने अभी वॉशिंगटन डीसी में अपना नाटक जाने पहचाने अनजाने का शो खत्म किया और जैसे ही मैं शो से बाहर आया, मुझे नाना पाटेकर के बारे में पता चला. ये तो बिलीवेबल ही नहीं है. मैं देश से हजारों हजारों मील दूर हूं और ये खबर, इस दुखद समाचार इमीडिएटली शो के बाद कोई मिल ही नहीं सकता है. लोगों की तालियां बज रही थी, स्टैंडिंग ओशन मिल रहे थे, मगर विंग में आते ही पता चला कि नाना पाटेकर नहीं रहे. इट्स टेरिबल. इट्स नॉट फेयर.
4: बहुत शॉकिंग है. जब नाना जी के बारे में सवेरे सुना, बहुत ही शॉकिंग लगा ये कि नाना जी इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे इंसान. बहुत बार मुलाकात हुई इनसे, हमेशा इनकरेज करते थे, हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की इंकरेजमेंट मिलता था. और ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो, और जो कभी भी दिखाते नहीं थे. नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था, देखता था, उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से, हम देखते थे, चाहे मराठी फिल्म हो, मराठी थिएटर हो. उनका योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था.
5: फिल्म के अलावा भी बहुत अच्छे दोस्त थे. हम उनके घर जाते थे, हमारा मिलना जुलना होता हो सकता है, लेकिन बहुत दुख है. बहुत कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट में मिला एक अच्छा एक्टर, बहुत सिंपल आदमी.
6: मेरा साबका नाना पाटेकर के साथ रहा है और स्मृतियाँ अब शेष हैं. मुझे जब पहली बार जया बच्चन ने चांस दिया था फिल्म बनाने का, अभय उस फिल्म का नाम था, तो स्वर्गीय नाना पाटेकर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जब वो 65-70 लाख रुपया लेते थे एक फिल्म करने का, तब केवल मेरे सब्जेक्ट, कंटेंट और स्क्रिप्ट को पढ़कर मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर भी. उन्होंने मेरी फिल्म अभय केवल 21,000 रुपए में की थी. ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भूल सकता.
7: एक ऐसा एक्टर चला गया जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है. एक्टर तो बहुत होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, अपनी छाप छोड़ के जाते हैं. चंद एक्टर होते हैं जो अपने आप में एक खासियत लेकर आते हैं, चाहे वो राजकुमार जानी हो, चाहे दिलीप साहब हो, राज कपूर हो, देवानंद हो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उनका। नाना पाटेकर उन एक्टरों में थे जिनकी अपनी एक खास पहचान थी। आप अगर फिल्म भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ डायलॉग सुनो उसको, क्या है देखो मेरे यहाँ पे, देखो खून, देखो वो, देखो, आप डायलॉग सुन के बोलेगा ओ नाना पाटेकर ही है।
8: मुझे सुबह 7 बजे अभी भी न्यूज से छोटा सा कंफर्म कर रहा है, इधर ही पुराने में शूटिंग कर रहा है, मुझे पूरे गोवा में आया देखा तो सच न्यूज़ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऑल न्यूज दिया है, सच न्यूज है, झूठ है।
9: ग्रेट एक्टर, महान एक्टर, गुरुओं के गुरु, हम मिमिक्री वालों के तो गुरु, आज गुरुवार के दिन नाना पाटेकर साहब शारीरिक रूप से दुनिया से चले गए हैं। हालांकि उनका महान कार्य एक्टिंग के ज़रिए, डायरेक्शन के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहेगा, हमें प्रेरणा देता रहेगा। जो सचमुच एक फिल्म इंडस्ट्री का तो नुकसान है ही, समाज का भी नुकसान है। नाम नाम का फाउंडेशन उन्होंने बनाया था और चुपके से अपनी फिल्मों की जितनी पेमेंट थी उसकी वो सेवा करते थे किसानों के लिए, और सीनियर की इज्जत करते थे, सीनियर के पैर छूते थे, पैर दबाते थे और जूनियर को बहुत प्यार करते थे।
10: इससे ज्यादा शॉकिंग कोई खबर हो ही नहीं सकती। ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि नाना पाटेकर दिल के दौरे पड़ने से चले गए। इतना फिट आदमी, इतना कंप्लीट मेंटली फिजिकली वेरी स्ट्रांग, नपातुला खाते थे, एक्सरसाइज करते थे और 75 साल की उम्र में भी बिल्कुल बिल्कुल फिट थे, 100% फिट थे। उन्होंने जिंदगी अपने हिसाब से जी, उन्होंने काम अपने हिसाब से किया।
0: Well, as everybody remembers Nana Patekar, his final rites, his last rites are taking place as we speak in Dhonje village near Sinhagar Road in Pune. I'm now being joined by Abira, who joined me live from the location where the last rites are taking place. Abira, talk to us more about the last rites, of course, taking place with full state and police protocol as we speak. But the world and India remembers Nana Patekar, a man who made every role his very own.
11: I have to tell you, after I reached here at Dhonje village near Pune, I forgot that this man was an actor, because he was much more than that for villagers here, people around here. They knew less, of course, he was a great actor, but more than that, he was a great human being. NAM Foundation, a foundation that he founded in 2015, where he supported families, community, and families of farmers who committed suicide, and the drought that had come during that time, the families who were affected by it, he has been supporting them. Let me show you around first. This is Dhonje village. Right here behind this place is his farmhouse where he used to live. He was a farmer at heart, we know that. And right now, all the excavators, trucks that you see here is where preparations are going on for the cremation. The CM and the deputy CM and actors, Marathi and Indian, all most Indian film actors are expected to come here to pay their respect. This is all, and of course he'll be given state honors. All the preparations are underway, and we also see that NAM Foundation members are all sitting here gathered, mourning Nana Patekar's death. We are here with them. You can see the CEO, Mr. Ganesh Tonte, who is NAM Foundation CEO. He is mourning, and all these people, if you talk to them, we realize that, you know, he was much more than an actor. Actor was just a part of his personality, but all these people only talk about the human that he is. You actually get to see the human being Nana Patekar is after talking to them. Let me just introduce you to Ganeshji. Ganeshji, हम NDTV से हैं और हम बॉम्बे से हैं। हम ज़्यादातर टाइम जब नाना जी के बारे में बात करते हैं, हम उनके एज एन एक्टर उनको देखते हैं, बट हमें यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि वो एक उनका एक एक साइड था, लेकिन जो इंसान वो थे वो बहुत बड़ा था उससे। आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे?
12: हमारे लिए तो पिताजी जैसे थे, मार्गदर्शक थे। मेरे जैसे बहुत सारे यूथ की ज़िंदगी उन्होंने बदल दी और एक ख़राब रास्ते से हमें एक अच्छे रास्ते पे लेके आए, सेवा के रास्ते पे वो लेके आए। हमें सिखाया सेवा का भाव क्या होता है, सेवा किस तरह से की जाती है, लोगों को अपना कैसे समझा जाता है। अगर कहीं पे भी महाराष्ट्र में किसी फैमिली को, अगर फार्मर फैमिली को प्रॉब्लम है तो वो आपका प्रॉब्लम है, आप उनके हो वो आपके है, ये सब सिखा के गए हमें, ज़िंदगी जीना सिखा के गए।
11: अगर आपको उनके बारे में एक कोई एक चीज़ याद है, कोई इंसिडेंट याद है जो आपने उनसे सीखा है, कोई एक चीज़?
12: उनकी पूरी ज़िंदगी ही हमारे लिए सीखती, हर दिन वो कुछ ना कुछ सिखाते थे हमें। उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करने को हमें मिलता था वो हमारे लिए एक सीख थी, और उस सीख से ही हम आज यहाँ पे है ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कभी बताया नहीं ये करना है, वो खुद करके दिखाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद क्या करूं, उनको कभी भूल ही नहीं पाते हम। तो ज़िंदगी उनका दिन रात वही थे हमारे लिए, उनके लिए जीना था, उनके उन्होंने जो सपने देखे उसको पूरा करने के लिए जीते थे हम सब।
11: और अब आगे क्या करने का इरादा है? ऑफ़ कोर्स उनका ब्लेसिंग आप लोग के साथ है, लेकिन उनके बगैर आगे बढ़ना है?
12: नहीं, उनके बगैर ऐसा नहीं है, उन्होंने ही एक ड्रीम हमें दिया है महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए। वो सपने उन्होंने जो सजो के रखे थे उसको पूरा करने के लिए अभी हमें जिद्दोजहद से काम करना होगा, और वो हमेशा एक विचार के रूप में हमारे साथ में हमेशा रहेंगे। डांटते भी रहेंगे, अच्छा भी बोलते रहेंगे, और नहीं जानता कि मैं कभी भूल पाऊँगा उनको, और वो भी हमें कभी भूलेंगे ऐसा नहीं लगता, हमेशा साथ में रहेंगे। और ये जो काम है नाम का, वो बड़े पैमाने पर ऐसे ही आगे जाएगा, वही उनके लिए वही सोच थी उनकी, और वही हम उनको देना चाहते हैं अभी।
11: उनके याद में यहाँ पे आप लोग कुछ बनाने वाले हैं, उनका स्टैचू हो या कुछ भी हो?
12: नहीं, इसके बारे में हमने अभी कोई सोचा नहीं। उनके बेटे मल्लार जी अभी गोवा में है, उनके साथ में है, उनकी फैमिली भी बाहर है, तो वो जब आएंगे फिर बात करके फिर हम डिसाइड करेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं।
11: और आज क्रिमेशन कितने बजे तक एक्सपेक्टेड है?
12: 7 बजे तक शायद।
11: और कौन कौन एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं?
12: सभी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के CM DCM साहब सभी आ रहे हैं, मिनिस्ट्री आ रही है, और उनके ऊपर प्यार करने वाले सभी लोग आएंगे।
11: थैंक यू सो मच। एज यू कैन सी वी आर हियर
0: राइट अबीरा
11: अ विलेज वेयर हु जस्ट लव दैट पर्सन नाना पाटेकर।
0: Right, Abhir, I'll come back to you shortly. I'm also being joined by Ritvik Bhalekar. He's a deputy editor and he's joining me live from Nanaji Wadi, which is the cremation ground there. Ritvik, the cremation will take place at 7 PM today. Of course, Nana Patekar's body was brought from Goa to Pune for people to pay their last respects. But tell us what's happening right now and who all can we expect at the cremation, because from the Prime Minister to the Chief Minister to all the stalwarts of Bollywood, everybody,

0: raw people who are here around, as we can see. We can see the preparations are on as the last rituals will take place here near Nanaji Wadi, where Nana Patekar stayed with his family. And we can see that all the people who loved Nana Patekar have started gathering here. This is the place where the cremation will take place. As we can see, this has been completely dug, and the last respect will be paid with state honors and with the help of police. The local administration is constructing a kind of a stage where Nana Patekar's last ritual will be conducted. We are expecting both CM Devendra Fadnavis and the Deputy CMs Eknath Shinde and Sunetra Pawar, who are expected to be here by 6:30. Also, once Mallar Patekar, son of Nana Patekar, and his wife reaches the hospital in Goa, where Nana Patekar's dead body has been kept, then with the due permission and approvals, the body will be taken in the air ambulance, and it will be flown to the nearest helipad, the NDA helipad, the army helipad, which is just few kilometers away, and they'll be brought here around 6:30 is what being told by the local sources. And once the body is brought in here, it will be we can see that all the preparations are in full swing, and they are almost
1: right, Ritwik,
0: and they are getting done with it. Once the body is brought in, the last respect will be paid here.
1: Right, Ritwik. So the last rites of Nana Patekar will take place at 7 p.m. today. We're expecting the Maharashtra Chief Minister, Deputy Chief Minister to be present to pay their last respect. Meanwhile, many leaders have mourned the death of Nana Patekar. They've called him an actor who has perhaps made every role his. Take a listen.
2: भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही मजबूत कलाकार और एक बहुत उत्तम व्यक्ति ऐसे श्री नाना पाटेकर जी, इनका अचानक निधन होना ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्रांतिवीर से लेकर नट सम्राट तक अलग अलग प्रकार की फिल्मों से उन्होंने न केवल लोगों का मन रिझाया बल्कि जन प्रबोधन भी किया, और एक देशभक्त के रूप में हम उनको जानते हैं। उनका जाना ये निश्चित रूप से सभी को खलेगा। एक देशभक्त, एक समाज सेवक और एक अभिनेता आज हमारे बीच से निकल गए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।
3: महाराष्ट्र का गौरव और मराठी मानुस का मान आज चला गया है। नाना पाटेकर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है, उसके बारे में बताएंगे हमें, हमारे व्यूअर्स को?
4: बहुत ही आज की घटना दुखद है, बहुत ही दुर्दैवी घटना है, और आज भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि वो एक बड़े कलाकार थे, कलावंत थे। उन्होंने कई मराठी हिंदी फिल्म बनाई और इतनी लोकप्रियता उनकी थी। एक नेचुरल उनकी भूमिका करने का जो उनका ये था, उनकी स्टाइल थी, वो सभी को पसंद रहती थी, और वो महाराष्ट्र को एक स्वाभिमानी नेता, स्वाभिमानी अभिनेता होते। इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र का स्वाभिमान हमने गंवाया है, एक बड़ा भाई गवाया है, एक सच्चा और दिलदार मित्र गवाया है। हमारे उनके बहुत ही पारिवारिक संबंध थे, और ये सिर्फ फिल्म में काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ फिल्म में बनाई नहीं, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। उनको कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपने किसान जो है, किसानों को राहत देने के लिए नाम फाउंडेशन के माध्यम से बड़ा काम किया है। किसानों की आत्महत्या कम हो, उनका जीवन में बदलाव हो, ये

0: पानी नाम फाउंडेशन के माध्यम से नदी तालाब में से मिट्टी निकालना, पानी का स्टोरेज बढ़ाना, किसानों को उसका फायदा कराना, इस पर बहुत उन्होंने काम किया है। और सूखा, अभी महाराष्ट्र में सूखा है, अभी हमारे को नाना की महाराष्ट्र की जरूरत थी, क्योंकि किसानों को मॉरल सपोर्ट देना ये इस वक्त नाना की आवश्यकता में जरूर, ये कमी जो है वो जरूर खलेगी।
1: जी बिल्कुल शिंदे जी, आपने ये भी बोला था कि गणेश उत्सव के दौरान आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी नाना पाटेकर जी के साथ, और उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें।
0: मैं उनके गणपति में हर साल पुणे में उनके खेती में जो घर है, वो गांव में जो घर है उसमें जरूर जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का वातावरण भी अच्छा लगता है। नाना एक किसान के रूप में भी मैंने देखा है, खेती करने वाला नाना भी मैंने देखा है। और उस वक्त मैं जब गया था तब मेरे घर में मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। नाना को जब पता चला तो नाना मुझ पर नाराज हो गए, तो बोले भाभी के पास आपको रुकना चाहिए था, आप यहाँ नहीं आते, अगले साल गणपति में आते तो भी चलता था। लेकिन मैंने उनको कहा, हमारी मित्रता, आपका प्रेम मुझे यहाँ पर खींच के लाया है। इतनी बड़ी घनिष्ठता हमारे दोनों के बीच में थी, वो मुझे बड़े भाई की तरह हमेशा मार्गदर्शन करते थे और हमेशा मुझे स्पष्ट रूप से कई बातें वो कहते थे।
1: शिंदे जी, आपने एक बहुत खास बात लिखी है जो मैं पढ़ना चाहूंगी कि नाना जी आपके दारेगांव में गटर सफाई के काम के लिए आए थे। इतने बड़े एक्टर थे वो, ही वुड बी ऑन द ग्राउंड वर्किंग, ये उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है?
0: देखिए, बहुत बड़े नेता होते, अभिनेता थे और उनका सम्मान था समाज में। लेकिन जब गांव में मैंने उनको बुलाया कि नदी हमारी जो कोयना रिवर है उसमें मिट्टी भरी हुई जो है नाम फाउंडेशन के माध्यम से डिसल्टिंग करना था, इसलिए खुद आए, वो खुद आ गए और खुद उन्होंने आने के बाद वो आए। बहुत ही उन्होंने बड़ा काम किया है,
2: देखा नहीं है लेकिन
1: जी,
0: और मैं इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये भी कहा था मुझे कि मेरे सफेद कपड़े देखकर कि एक भी दाग नहीं रहने वाला नेता के रूप में मैं तुझे देखता हूँ, इसका मुझे गर्व है, अभिमान है।
3: नाना पाटेकर मेरे बहुत नजदीकी व्यक्तिगत मित्र थे, पिछले अनेक सालों से उनका मेरा पारिवारिक संबंध भी था। किसानों के लिए, पानी के लिए, जल संवर्धन के लिए जो आत्महत्या कर रहे थे किसान, उनके लिए संवेदनशील भाव से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। समाज के प्रति एक सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। अभिनय में तो हम उनको अनेक सालों तक याद रखेंगे। नट सम्राट में उन्होंने किया हुआ काम, मराठी नाट्य भूमि पर जो कार्य काम किया है, उनकी अनेक भूमिकाएं हम कभी भूल नहीं सकते।
4: We're slipping into a very short break, but come right back. We'll be tracking other stories and stories that matter here on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।

0: प्रोटेस्ट जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, ऑफकोर्स राहुल गांधी के बिहेवियर के अगेंस्ट है, पुलिस विमेन पुलिस कॉन्स्टेबल्स के संकल्प पर, इसके अलावा भी जो वोट चोरी का मुद्दा और SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, और आज भी प्रोटेस्ट है, कल भी होगा, उस पर क्या
1: उनके
0: कहना
1: पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। बेवजह के मुद्दे वो उठा रहे हैं और उस पर अपनी अराजकता युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो अराजकता फैला रहे हैं और महिलाओं पे, और उनका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि वो पुलिसकर्मी बहनों के साथ भी सब बदसलूकी करने लगे। पूरी दिल्ली की ये बहनें हमारी अपनी बात रखने आई हैं उनके सामने कि ये सब नहीं बर्दाश्त करेगी बहनें। उनको बता चुके हैं कि दिल्ली विकास को, पूरे देश को विकास की आदत लग गई है, वो विकास पसंद करते हैं, इसीलिए ही BJP के साथ है। इस तरह से बदसलूकी फ्रस्ट्रेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी बात रख के ही जाएंगे, हम यहीं सड़क पर बैठे हैं अपनी बात रखेंगे।
2: Well, another FIR has now been registered against Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. Delhi police has now registered an FIR against both the siblings and all their leaders and workers. FIR has been registered for assaulting the police, number one, obstructing government work, pushing and misbehaving with them during the Congress protest in New Delhi area yesterday, that's next to Jantar Mantar. And also, the BJP has also launched an attack on Rahul Gandhi over a video from the Congress protest near Jantar Mantar, alleging that he pushed and inappropriately touched a woman police officer. The BJP has now questioned his conduct and accused him of hypocrisy over his public statements on women's dignity. Meanwhile, Congress has hit back and asked, why was Delhi police interfering in the protest?
3: वो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, और बदनाम करके, और लोकतंत्र जो इतना जीवंत लोकतंत्र है भारत में, उसको भी वो बदनाम करना चाहते हैं।
4: राहुल गांधी चाहते हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैसा काम करना चाहिए, उसका भी ट्यूशन उनको कहीं से चाहिए तो हम उसका भी इंतजाम करते हैं। ये जो काम है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देश में पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए, देश में पहले भी विपक्षी पार्टियों ने अपना मत रखा, पर इस प्रकार की बदसलूकी महिला पुलिसकर्मियों के साथ किसी ने नहीं करी। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, अनकॉल्ड फॉर, और इसीलिए राहुल गांधी को इसका जवाब देना।
5: कांग्रेस पार्टी का व्यवहार बिल्कुल अर्बन नक्सलियों जैसा हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियोस के अंदर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के जवान को लातों से मारने का प्रयास कर रहे हैं, मार रहे हैं। राहुल गांधी खुद महिला पुलिस अधिकारियों को धक्का दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा खुद महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स को धक्का देने का प्रयास कर रही है। कल हमने देखा कि एक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी फैक्शन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुलिस कर्मी को दांतों से काटने का हरकत कर रहे हैं। ये सब यही पॉइंट करता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग एनार्की और अर्बन नक्सली व्यवहार सड़कों पर दिखा रहे हैं। अगर इनका मकसद लोकतंत्र बचाना होता तो ये लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करते हैं, परंतु इनका मकसद लोकतंत्र बचाना नहीं, परिवार बचाना है।
6: विल एनी डिसेंट इंडिविजुअल, लेट अलोन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन, behave in such an inappropriate manner with a woman, that too a female police personnel? What kind of message is Rahul Gandhi trying to convey to the woman of India or Nari Shakti with such crude and improper conduct? On one hand, Rahul Gandhi has the audacity to lecture about smash the patriarchy, and on the other hand, he engages in such indecent behavior. Disgrace on Rahul Gandhi for insulting the dignity of a woman, and if he has any sense of shame or guilt left, Rahul Gandhi should apologize immediately.
7: राहुल गांधी का एक वीडियो BJP अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने महिलाओं के जो पुलिसकर्मी महिला थी उनके साथ धक्का मुक्की की और गलत व्यवहार किया।
8: पुलिसकर्मी वहाँ क्यों होगी? राहुल गांधी के लिए जहाँ तक सवाल है, जब पुलिस बर्बरता करती, नशंसा करती है, वहाँ पे धक्कम दुक्की होती, तो किसको कहाँ धक्का लगा ये अलग बात है। हम अपनी तरफ से दृढ़ता से खंडन करते हैं, परंतु राहुल गांधी के साथ ये व्यवहार, इसलिए आकाशवाणी में नहीं बैठने देंगे, कल जंतर मंतर में गए वहाँ नहीं बैठने देंगे। तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब दो, आखिर हम कहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए जाए?
9: कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था बची हुई है जिसके ऊपर की राहुल गांधी का भरोसा है? तो जहाँ पर राहुल गांधी का भरोसा नहीं है तो इसका मतलब अम्बेडकर जी के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये एनार्की पैदा करना चाहते हैं और ये इस देश को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की साजिश है और ये जनता कभी उसको माफ नहीं करेगी।
2: Well, it's day three of the Congress versus the EC showdown in New Delhi. They all have assembled at the Raj Ghat and they're adamant on meeting the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. This, of course, after their lunch, which was at 1:45 p.m. today. They're also demanding a new place to protest. It is day three, like I mentioned, but ahead of the next round of agitation, leaders also gathered for lunch. This time, the menu featured garlic bread, soup and dim sum, alongside salad and perhaps Diet Coke. Big spread on the table as opposition leaders took a lunch break. Yesterday, of course, they met at Sagar Ratna, and today it was perhaps Chinese on the menu. Well, before the political focus returned to the confrontation with the Election Commission. And we have some more breaking news coming in for you. SP Chief Akhilesh Yadav has now challenged Chief Minister Yogi Adityanath to contest from Ayodhya. Akhilesh said BJP is conducting survey after survey, but it is failing in every survey. He further dared the CM to contest from Ayodhya. If the Chief Minister is so confident, then the Ayodhya battlefield is open for him. And take a listen to what Akhilesh Yadav said, and then we'll go across to our reporter.
10: भारतीय जनता पार्टी सर्वे के बाद सर्वे करवा रही है और हर सर्वे में पीछे छूट जा रही है। सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
2: And of course, battleground Uttar Pradesh is only heating up. A political row is brewing in UP after CM Yogi Adityanath called BJP sweep in Rajya Sabha elections a trailer for 2027. With BJP and SP all set to win 8 and 2 seats respectively, Yogi said that the 80-20 war has returned. With 80% backing the NDA and 20% backing the PDA, Yogi said that the fate of PDA will be sealed soon. Hitting back, SP Chief Akhilesh Yadav called this an unacceptable threat to PDA communities, claiming that their oppression is now evident to all and that Bharatiya Janata Party will be taught a lesson. Meanwhile, the Samajwadi Party chief is all set to visit Ayodhya today to attend a Bhagavat Katha at SP leader's village. His first visit to the holy city since 2024. Well, the BJP has now mocked his visit by claiming that such disguises during elections to garner votes will not work in Ayodhya.
11: कल उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है। 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
12: आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 8 सीट जीत चुकी है। उसी को लेकर कहा यही परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में 27 में 80-20 का औसत चलेगा। प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
13: जनता ने विश्वास खो दिया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति, योगी बाबा के प्रति, और अगर विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है, यकीन बढ़ा है तो पीडीए पर बढ़ा है, माननीय अखिलेश यादव जी पर बढ़ा है और उनके नेतृत्व में

0: समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बड़ी शानदार बनेगी, करीब करीब 325 सीटें हम पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस देश से जाने की विदाई की शुरुआत शुरू हो जाएगी।
1: क्रॉस टू प्रदीप भंडारीज बीजेपी कॉन्फ्रेंस, दैट टेक अ लिसन।
2: अगर सद्बुद्धि मिल जाए तो जवाब उनको देना चाहिए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है तो क्या रील मेकर राहुल गांधी कोर्ट में उनका विश्वास नहीं है? क्या उनका केस इतना कमजोर है या वो कोर्ट के प्रति अविश्वास और दबाव की राजनीति सड़कों से करना चाह रहे हैं? इसीलिए पिछले 3 दिन से कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, गुंडागर्दी, अराजकता धरने की आड़ में करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सवाल, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये कोर्ट से इसीलिए घबराए हैं क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी का मामला कोर्ट के अंदर गया है कांग्रेस पार्टी के तथ्य हमेशा कमजोर हुए हैं। ये ईवीएम की बात करते थे, जब मामला ईवीएम का कोर्ट में गया तो कहा गया कि इफ यू विन ईवीएम्स आर टेम्पर्ड, व्हेन यू लूज दे कंप्लीटली गेट एम टेम्पर्ड, तो कोर्ट ने इनके झूठ को एक्सपोज किया। उसके पूर्व में याद करिए कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ ये अविश्वास का प्रस्ताव लेके आए थे जो खारिज हो गया। सो द कांग्रेस हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंटिमिडेटिंग और अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, बंगाल में 1977 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार में 1990 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, उड़ीसा में 2000 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, आंध्र प्रदेश में 2014 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। इस समय कौन वोट चोरी कर रहा था? कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, क्या कांग्रेस पार्टी खुद केंद्र की सरकार क्या राज्यों के अंदर वोट चोरी कर रही थी? सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस जनता में अविश्वास हो चुका है। द पीपल ऑफ द कंट्री हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन द एनआरकी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इसीलिए इनका नया मॉडल आ गया है, 1000-1500 लोगों को दिल्ली की सड़कों पर गैदर करो, धरना करो और धरने के बहाने इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास करो। जो जो महात्मा गांधी जी में विश्वास रखता है, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसको ये सवाल का जवाब राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला क्या सड़क से हो सकता है? जब सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला सड़क से नहीं हो सकता, तो क्या ये अपराध नहीं है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सड़क पे भीड़ को मोबिलाइज करके अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से कहीं किसी जगह घुस जाते हैं, कहीं भी धरने पर बैठ जाते हैं? दिस इज समथिंग विच इज अनडेमोक्रेटिक। जो राहुल कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है और क्रिमिनल है, और इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देना चाहिए। ये क्रिमिनलिटी की बात करते हैं, असली क्रिमिनलिटी ये होती है कि जब आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे अविश्वास रखते हो। आप सब बताइए, सब पत्रकार हैं, कितनी भी भीड़ राहुल गांधी मोबिलाइज कर दे, फैसला तो कोर्ट से होगा क्योंकि मामला सब जुडिस है। जब कोर्ट दूसरी तारीख दे चुका है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि राहुल गांधी अराजकता की टूलकिट के आधार पर इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रेशर बना रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माय वे और दी हाईवे। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, ये परिवार का राज नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि जब मामला कोर्ट सुनती है तो सड़कों की भीड़ के आधार पर कोर्ट फैसला नहीं करती, कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला करती है। क्या आपके केस में इतनी कमजोरी है कि आपको लग रहा है कि कोर्ट के अंदर आपका केस कमजोर है इसीलिए आप बाहर से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हो? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, जो हमने देखा है, एक युवक, इस देश का नागरिक, आप सब में से एक जिसने इस देश में सच्चाई बोलने का प्रयास किया, उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को रखा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और वर्कर्स ने उसको घेर कर उसको पीटने का प्रयास किया। आज कांग्रेस पार्टी वी द पीपल ऑफ इंडिया को थ्रेटन कर रही है। संविधान के पहले 3 अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में नारे लगाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वी द पीपल ऑफ इंडिया को पीटा। यह अपराध होता है राहुल गांधी। इस अपराध के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना चाहिए। तो आज जो हम भारत की सड़कों पे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सड़कों पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देख रहे हैं, वो सिर्फ एक बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी को वी द पीपल ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी इज फाइटिंग अगेंस्ट द वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लड़ाई कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का परिवार बनाम वी द पीपल ऑफ इंडिया हो चुकी है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया साइलेंटली कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी को देख रहे हैं। ये कह रहे थे बैलेट की बात कर रहे थे, अभी हमने देखा असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर अलग अलग जगह चुनाव हुए, हर जगह ईवीएम से नहीं, वहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। तो आज सच्चाई की सिर्फ बात यह है कि राहुल गांधी जान चुके हैं कि उनका जनता में अविश्वास है और जनता के उनमें विश्वास नहीं है। इसीलिए लोकतांत्रिक रूप से जब राहुल गांधी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं तो वो लोकतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। ही इज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन दिस कंट्री बाय नॉट बिलीविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड बाय नॉट बिलीविंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या राहुल गांधी और गांधीवादी परिवार इस देश के न्यायालय से ऊपर है? ये सवाल हम इस देश की जनता से पूछना चाहते हैं। और राहुल गांधी की गुंडागर्दी यही स्पष्ट करती है कि वो अपने आप को इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं, और जो परिवार अपने आप को इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझता है वो परिवार का विश्वास लोकतंत्र में नहीं हो सकता। इसी
1: वी विल बी ट्रैकिंग दैट शोडाउन बिटवीन द कांग्रेस एंड इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन वेरी क्लोजली, बट राइट स्लिपिंग इनटू वेरी शॉर्ट ब्रेक। आई एम राइट बैक, कमिंग अप नेक्स्ट इज प्राइम 5 वेयर वी ट्रैक नाना पाटेकर नो मोर एंड द ट्रिब्यूट्स पोरिंग इन फॉर हिम।
3: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
4: Higher rate, check the audio.
3: Let's do it. Let's start.
5: Breaking story, we're jumping straight into it.
3: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
6: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
7: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
6: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
3: The line of control, Shivaroor, NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो, और जो कभी भी दिखाते नहीं थे। नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था, देखता था, उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से, हम देखते थे, चाहे मराठी फिल्म हो, मराठी थिएटर हो, उनका योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था।
1: फिल्म के अलावा भी बहुत अच्छे दोस्त थे, हम उनके घर जाते थे, हमारा मिलना जुलना होता सबका, लेकिन बहुत दुख है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट में मिला एक अच्छा एक्टर, बहुत सिंपल कपड़े पहने से सब सिंपल।
2: मेरा साबका नाना पाटेकर के साथ रहा है और स्मृतियाँ अब शेष हैं। मुझे जब पहली बार जया बच्चन ने चांस दिया था फिल्म बनाने का, अभय उस फिल्म का नाम था, तो स्वर्गीय नाना पाटेकर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जब वो 65-70 लाख रुपया लेते थे एक फिल्म करने का, तब केवल मेरे सब्जेक्ट कंटेंट और स्क्रिप्ट को पढ़कर मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर भी, उन्होंने मेरी फिल्म अभय केवल 21,000 रुपए में की थी। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं, बिल्कुल नहीं भूल सकता।
3: नाना भाऊ का जाना मतलब फिल्म इंडस्ट्री का भारतीय रंगमंच थिएटर, भारतीय हमारा जो है, और मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा, ये भारतीय जितने भी क्रिएटिव क्षेत्र हैं उनके लिए दुखों का पहाड़ है आज। ये अभी ऐसा लगता है कि न्यूज़ ये गलत हो जाए।
4: अगदी खरं म्हणजे काय बोलावं हेच सुचत नाही। अजूनही मी धक्क्यातून पुरेसा सावरलेला नाही। म्हणजे 1.5 दिवसापूर्वी आमचं बोलणं झालं, त्याचा फोन आला होता, माझ्या नव्या नाटकाला येऊ शकला नाही, पुढच्या प्रयोगाला नक्की येईन हे सांगायला त्यांनी फोन केला होता। आज सकाळी सकाळी ही बातमी कळल्यावर सुन्न झाल्यासारखं झालं।
5: Well, I'm now being joined by our entertainment editor Abira, who's joining me live from Pune's Donge village, where the cremation of Nana Patekar will take place at 7 p.m. Abira, you join me live from Donge village, and we can see all the protocols right behind you because he will be cremated with full state honors. But Nana was somebody, not an actor who made every role his, but he spoke to a lot of people there. He was a philanthropist who changed the lives of very many young people.
6: Yes, absolutely. Like I said before also, you know, before we came here, we were talking about the Nana Patekar, the actor that we know, and he's such an amazing actor. Everybody's talking about that, right? But when we came here, everything changed, because the moment we started talking to the people, nobody talks about him as an actor. Everybody talks about him, the human that he was, the what he taught them, the humanity that he taught them, what they have learned from him is what everybody is talking about. You know, we have spoken to few people and they've told us that, you know, he didn't, when he earned money, maybe a crore or something, he never ever bought a car. Out of that, 90% he would give away to NAM Foundation to help the farmers. He had a foundation that he built in 2015, and he taught all those people who are a part of the foundation how to do seva, how to take care of people of your own community, you know, and the farmers who are suffering because of drought, the families of farmers who have died because of suicide. So he gave his life and he never spoke about it. He never spoke about it. He never had press conferences about it. He never posted on social media. And that's the person he was. He never spoke about what he did. But we came to know the larger than life that man was giving and everybody today you see here, you can see the preparations are going on.

0: सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ के?
1: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला?
0: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों को बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
2: भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन है, भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार है, उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक लाइक दिस, यू नो।

0: establishment, and these commercial establishments will ensure that Dharavi will have a 10-year maintenance, which will be taken care of by the SPV. But beyond that, what will also happen is that the corpus created from the revenue generated from these commercial spaces will take care of maintenance. So it is not only a home, it's a home that takes all considerations into the picture before it's planned. And that's why this is a project like no other. The Dharavi redevelopment project will not only change the face of what Dharavi looks like today, it will be an example for Mumbai and the entire world of how what was once known as Asia's largest slum can be transformed into a modern, livable, well-lit, well-planned, sustainable urban habitat right in the heart of Mumbai. You saw the future at the Dharavi Experience Center. But when you live in Dharavi for years, this is what home looks like. And that's why this change is so important for the residents of Dharavi, who have to live in extremely difficult conditions every day. But all that is going to change from this. They will move into what you saw at the Dharavi Experience Center. So let's just move in and speak to residents of Dharavi, who of course have lived here in these conditions for many, many years. And today, as they see that change unfolding in front of them, we'll get in a word with someone who's lived here for ages. For many, getting a home, a proper, well-lit, airy home, and you can see, of course, here there's no sunlight. It's absolutely an alleyway. Getting a home is a blessing. And for Dharavikers, this is what a home looks like. This is how cramped it is. It is the size of an elevator, perhaps. And there's a kitchen. And of course, everything is in this one room. And this is where they sleep, this is where they cook, this is where they eat. And of course, this is how difficult conditions are. So, madam, aap kitne saal se yahan pe reh rahe
1: hain? Main 35 saal se hoon.
0: 35 saal se?
1: Ji, ji.
0: Kya pareshani hai rehne mein, Dharavi mein?
1: Dar paani galli mein bhar jata sir. Aag lag jata, aag ka dar hai. Aur bathroom ki takleef hai sir. Ek ek ghanta number lagao, aur usme keede aate hain paani mein. और शाम को 6 बजे वह पानी पी नहीं सकते हैं, खाना कम खाते हैं, ऐसा मतलब बहुत तकलीफ है। बाथरूम की तो ज़्यादा है और गंदे की गली गली में बहुत है।
0: यही घर है आपका, इतना ही छोटा?
1: बस इतना ऊपर नीचे बस यही है सर। इतने में हम लोग 7 जन रहते हैं सर।
0: कितने लोग?
1: 7 जन।
0: 7 जन?
1: 4 बच्चे।
0: इस घर का साइज क्या है?
1: ये साइज है कुछ 4x10 का। तो बहुत खुशी हो रही है कि कब मिले कब जाने का। बहुत खुश हो रही, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हम लोग की तकदीर पलट दिया, और जो दे रहा है अल्लाह उसको अच्छा रखे, जो दे रहे हैं उनको बहुत अच्छा रखे, यही दुआ निकलती है। हमारे बच्चे सुकून से रह लेंगे।
0: एक घर में अपना टॉयलेट होना, दो टॉयलेट है घर में और बेडरूम है, बड़ा किचन है, तो एक तरीके से आपको लगता है कि जिंदगी में एक नई जिंदगी?
1: नई जिंदगी हम तो नहीं जी पाए, हमारे बच्चे भी, उनके बच्चे जी लेंगे अच्छे, तो हम बुढ़ापे में देख सकते हैं कि हमारे बच्चे की लाइफ चेंज हो गया।
0: एक तरीके से आपने आपके बच्चों को एक गिफ्ट तो देके गए?
1: गिफ्ट देके गए, ये तो याद, वो याद करेंगे। वो मेरी बहू जो है ना, वो भी बोलती है मोबाइल में देखती, बोलती है फुप्पी बहुत अच्छा मिलने वाला है, फुप्पी बहुत, मेरी बहू, तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। मैं तो इतना जानकारी नहीं, वो बोलती है, तो मेरे जो दे रहे उनको अल्लाह अच्छा रखे, जो हम लोग को दे रहे हैं, मतलब दिल से ना एकदम नस नस दुआ देती है।
0: ये घर में आप कितने साल से रह रहे हैं और क्या इतना ही आपका घर है?
2: नहीं, मेरा घर यहाँ से वहाँ रोड कटिंग तक गए। हाँ। तो रोड कटिंग में आधा जगह गया, आधा जगह गटर में गया। हाँ। तो इतना ही जगह बता बच्चा, तो मैं इसमें से खुश है इतना जगह में।
0: क्या तकलीफ होता है इस छोटे से घर में रहने के लिए? हाँ। ये तो इसको ये कमरा भी एक पूरा नहीं है।
2: नहीं, ये पूरा कमरा, पर क्या करेगा अभी रहने को, मेरा कोई दूसरा घर नहीं है, मेरा यही सहारा है, तो कैसा भी गुजारा करना ही पड़ता है ना सर। और गर्मी में देखो इतना तकलीफ है, देखो मशीन रखी है, अस्थमा पेशेंट हो, हफ्ते में 2 महीने, साल में 2 बार 3 बार भर्ती होना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है।
0: क्योंकि धारावी में कहा जाता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, क्योंकि यहाँ के जो चैलेंजेस हैं इस कंडीशन में रहने के लिए, लोगों की अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है जैसे आपने कहा। लेकिन कितने साल से आप हैं यहाँ पे?
2: मैं 38
0: 38 साल
2: हो गए मुझे यहाँ पे।
0: अच्छा, हाँ। तो एक चीज़ मुझे बताइए, क्या आपने क्या होने वाला है उसे देखा है?
2: अभी नेट में वो दिन तो घर देखे बताए हैं पंडित जी ने, नेट में समाचार में देखते ना तो बताए घर, तो घर तो देख के बहुत खुशी हो गई, पसंद आ गए घर।
0: कैसा लगा घर?
2: अच्छा लगे, भी हम भी सोचते कि ऐसा घर हमको भी मिले। अभी अभी मिलेगा नहीं तब तक हम नहीं बोल सकते कि हमारा चाहे करके,
0: लेकिन मिलेगा ये ज़रूर आश्वासन।
2: लेकिन अभी आश्वासन है कि मिलेगा, पक्का मिलेगा। अभी
0: बहुत सारे अफवाहें होते हैं, लेकिन आज आपने देख लिया कैसे कर?
2: हाँ, देख लिया मैंने, देख लिया नेट पे, देखती है ना रोज़ समाचार देखती है मैं। क्या
0: कभी सोच सकते हैं कि यहाँ से वो 350 स्क्वायर फीट के घर कैसा? हाँ। एक घर क्या होता है वो देख के लगा होगा कि यही ज़िंदगी होनी चाहिए?
2: नहीं, अभी ऐसा सोचता है कि अभी इतनी हमारी ज़िंदगी ख़राब गई, अभी तो अच्छा दिन जाए, जो जीना है 2-5 साल तो वो तो हमारा अच्छा चले जाए।
0: अच्छे दिन आखिर आ रहे हैं।
2: अरे आ जाएगा अभी
0: बस। हाँ,
2: अभी तो विश्वास नहीं था, अभी विश्वास हो रहा है कि अभी हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे।
0: तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि आखिर में जो हम एक तस्वीर देखे हैं वो रियलिटी में बदल रहा है?
2: बदलेगी, अभी इसमें कोई शंका नहीं है।
0: बदलेगी धारा?
2: हाँ, पक्का 100% बदलेगी अभी।
0: फ्रॉम दीज नैरो गलीज विथ नो सनलाइट एट ऑल to spacious, airy homes. This is not just the transformation of Dharavi. It's something that not only Mumbai, but India will be proud of, because so many people who are packed into what was so far known as Asia's largest slum will finally be living in an urban habitat that's spacious, well-lit, airy, and above all, sustainable, not just for their livelihoods, but also for their health as well. From the bylanes of Dharavi, with camera person Rajendra Dayalkar, Saurabh Gupta, NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
2: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand. हर रोज़

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
10: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
11: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: आन और शान के लिए समर्पित रहा, वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया। वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया। उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
1: ओ नाना पाटेकर, मेरे नाना, मेरे नाना, माय गॉड। मैंने अभी वॉशिंगटन डीसी में अपना नाटक जाने पहचाने अनजाने का शो खत्म किया और जैसे ही मैं शो से बाहर आया, मुझे नाना पाटेकर के बारे में पता चला। ये तो बिलीवेबल ही नहीं है। मैं देश से हजारों हजारों मील दूर हूं और ये खबर, इस दुखद समाचार इमीडिएटली शो के बाद कोई मिल ही नहीं सकता है। लोगों की तालियां बज रही थी, स्टैंडिंग ओशन मिल रहे थे, मगर विंग में आते ही पता चला कि नाना पाटेकर नहीं रहे। इट्स टेरिबल, इट्स नॉट फेयर।
2: अगदी खरं म्हणजे काय बोलावं हेच सुचत नाही। अजूनही मी धक्क्यातून पुरेसा सावरलेला नाही। म्हणजे दीड दिवसापूर्वी आमचं बोलणं झालं, त्याचा फोन आला होता, माझ्या नव्या नाटकाला येऊ शकला नाही, पुढच्या प्रयोगाला नक्की येईन हे सांगायला त्यांनी फोन केला होता। आज सकाळी सकाळी ही बातमी कळल्यावर सुन्न झाल्यासारखं झालं।
3: देखा तो सच्ची न्यूज़ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऑल न्यूज दिया है, सच न्यूज है, झूठ है।
4: I'm go across to Abira, who's joining me live from the cremation ground at the Donge village. Abira, people have started pouring in and they've started paying their last respects at the Nanchiwadi in Pune. That's exactly where Nana Patekar also wanted to be cremated. But what's happening right now? Has the CM and the Deputy CM of Maharashtra arrived there or not, Abira?
5: Can you hear me? Okay, we are right now in Donje village where Nana Patekar lived most of his life. This is the place where he started NAM Foundation in 2013, and this was his wish that he be cremated in this place. This whole land that you see here,
6: that he be cremated in this place. This whole land that you see here, it is 27 acres land, and it is also the place which is owned by him. He used to farm here, he used to live here, and all the earnings that used to happen from this farming used to go to the people of this community. Also, if I can show you around, this is the same place that the cremation is happening. People from around 5 to 10 kilometer radius have come in here just to pay their last tribute. Right now, they are preparing for the cremation, but but guests have started coming in. Politicians have walked in. We are still waiting for the CM and the Deputy CM to come in. His body is already on his way to Pune Airport from Goa. What you see is people who really love him. It's his place. It's his community. People really don't care if he was an actor, if he was a film star. No.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
2: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
8: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: is yesterday in the national capital. From policemen being kicked by Congress workers, to cops claiming that they had been bitten and beaten, to videos that showed Rahul Gandhi pushing a lady cop and Priyanka Gandhi elbowing a woman constable in the stomach. Based on these videos now, an FIR has been registered against multiple people, including Rahul and Priyanka Gandhi, on charges of assault, manhandling and obstructing government servants from discharging their duties.
1: Yes, एक ये बहुत ही सॉरीफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसका मैं खुद भी विटनेस रही हूँ. विमेन पुलिस ऑफिसर्स, विमेन कॉन्स्टेबल्स, उनको फिजिकली और वर्बली अब्यूज किया जा रहा है. अजीब अजीब से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद हम यहाँ पे रिपीट भी ना कर पाए, और एक तरीके से डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है पुलिस फोर्स को, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है. बट एज आई सेड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारी पुलिस फोर्स वो सारे तैनात हैं, अपनी ड्यूटी पे लगातार लग रहे हैं. मॉरली उनको पता है उनकी लाइन क्या है, लीगली उनकी ड्यूटीज क्या है, वो मोटिवेटेड है एंड वी विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज.
2: नो मैम, इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास, डेली ड्यूटी लगती है तो इतना टाइम नहीं है.
3: विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म यू आर वेयरिंग, बट एज ह्यूमन डीलिंग ग्राउंड पे इंसान के नाते, एक फीमेल होने के नाते आपको कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक फीमेल चाहे यूनिफॉर्म में हो या ना हो, बट हाथ पाई होना.
2: मैम ये तो आपको भी पता है, गलती लगता है, बहुत गंदा लगता है, बट क्या कर सकते हैं मैम, हमारी ड्यूटी है.
4: मेरी वाइफ ने कल शाम को ही देख के मुझे फ़ोन किया, कह रही आपको चोट लगी क्या, कह रहा किसी ने आपको लात मारी. मैंने अब मैं फ़ोन पे क्या कहता उसे, मैम ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. फिर उसने बाद में दूसरे एंगल से वो वीडियो दोबारा देखा, फिर उसने कहा नहीं नहीं आपके साथ ही हुआ है, सच में हुआ है. अब तो मीडिया में सब जगह हो ही गया है, तो फिर हमारे पास भी कैमरे, उनमें भी रिकॉर्डिंग है सब जगह. अब मेरी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सब मेरे को फ़ोन करके वो पूछ रहे हैं, तो एक इमेज वाली बात है, वो सब जगह एक तरीके से बड़ी बेइज्जती वाली सी बात हो रही है.
0: Undeterred, the Congress has now declared that tomorrow they will be meeting with the President of India and hand over a memorandum to her. The intention is clearly to keep the momentum going, to keep the pressure on the government and on the Chief Election Commissioner. But as these protests and agitations continue, the fundamental question still remains. Because remember, not only did the issue of SIR go all the way up till the Supreme Court, but now the continuation of Chief Election Commissioner, that has also been challenged before the Supreme Court of India. So who will decide in a democracy? Is it going to be the Supreme Court or the streets?
5: दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है. पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका. उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा. रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है. और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस.
6: देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष संविधान की हत्या करते हुए अराजकता का माहौल बना रहा है, और यह कहना गलत नहीं होगा जो सारे आरोप राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है. लेकिन आधार क्या है? दीज बेसलेस एलिगेशंस बीइंग लेवल्ड बाय एन इररिस्पॉन्सिबल एनार्किस्ट ऑपोजिशन डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो बेस.
7: हमने कल कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों का वीडियो अकाउंट भी सुना है, उन्होंने जो बयान दिए हमने वो भी सुने हैं. महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ ली गई, कांग्रेस कार्यकर्ता 50-50 इकट्ठे होकर महिला पुलिसकर्मियों को एकांत में ले जाने का काम कर रहे हैं. ये ऑन वीडियो महिला पुलिसकर्मी जवाब दे रहे हैं. वहां पर महिला पुलिसकर्मियों ने खुद वीडियो पर आकर के बताने का काम किया है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं.
8: प्रियंका गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे.

0: सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा
6: का राजा प्योर मसाला
7: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए एनी सजेशंस जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन Small.
8: अब पूरी पिक्चर देख लो लोन ऑप्शंस बिग सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग ब्रांच नेटवर्क बिग अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता

0: Car loan, two-wheeler loan.
1: There's nothing small about us.
2: Oh, Jeevan, nothing small about us.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: experience at the war. His love as a patriot and for Indian Army was indeed a notable one. Beyond his cinematic achievement, off-screen, through NAM Foundation, he stood beside drought-hit farmers. Through his initiative, the help is provided by the foundation as monetary funds and kind. It worked as a ray of hope for farmers in the agricultural sector.
1: It was very shocking when I heard Nana Ji about it. It was very shocking that Nana Ji, इतने टैलेंटेड इतने अच्छे इंसान बहुत बार मुलाकात हुई इनसे हमेशा इनकरेज करते थे हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की ये इनकरेजमेंट मिलता था और ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो और जो कभी भी दिखाते नहीं थे नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था देखता था उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से हम देखते थे चाहे मराठी फिल्म हो मराठी थिएटर हो उनका योगदान उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था
0: The tributes to the veteran actor are pouring. Bollywood actors pay respect to one of the finest talent of his generation. Akshay Kumar wrote that he is saddened by the news and regarded Nana Ji truly one of a kind. Actor Raveena Tandon expressed her sadness and shock and said that we have lost a legend today. Sunil Shetty, Anupam Kher, Smriti Irani and many more expressed their grief. His legacy remains in every corner of cinema, from Marathi films to Bollywood, and his philanthropy works continues to support the farmer community. Mayank Chaudhary, NDTV.
2: Well, from intense drama to unforgettable comedy, Nana Patekar had a way of making every word count. His powerful delivery turned dialogues into memories that stayed with audiences for generations. Let's revisit some of those dialogues and moments.
3: सुबह घर से निकलो भीड़ का एक हिस्सा बनो शाम को घर जाओ दारू पियो बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका
4: दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है दुख को भूलना पड़ता है देख बीवी बच्चे का श्राद्ध किया क्या नहीं था उसके पास पैसा था गाड़ी थी बंगला था बच्चे को मार डाला खुद को चला डाला हम क्या किया देखते बैठा भूल गया सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ के?
3: ये ले ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून बता इसमें मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा बता बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया तू कौन होता है फर्क करने वाला
5: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से कौन सा कानून कैसा कानून ये कानून तो चंद मुजरिमों बन बैठा है इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं
3: भारत मेरा देश है बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा इट शुड बी लाइक दिस यू नो समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए देना होगा मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग
6: इस्लाम खतरे में है दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है इसका तुझे इल्म ही नहीं क्योंकि तू जाहिल है
3: का तमाशा देखने अब मुझे लटका देंगे जुबान ऐसी बाहर आएगी आंखें बाहर आएगी थोड़ी देर लटकता रहूंगा फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी
7: आलो ले लो कांदे ले लो
2: Well, one of Indian cinema's finest actors, Nana Patekar, left a distinct mark with his versatility. From the intensity of Krantiveer to the comedy of Welcome. But his greatest role has been off-screen. Known for his brutally simple lifestyle, Nana Patekar has dedicated a large part of his earnings to help drought-hit farmers of Maharashtra through his NGO, NAM Foundation. an organization he co-founded with fellow actor Makarand Anaspuri to provide relief, water conservation and support to the farmers and the families. And on that note, we're slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.

0: And well, it's a major loss for Indian cinema this morning. Veteran actor Nana Patekar has passed away at the age of 75. Nana Patekar will be accorded a state funeral. He rather was accorded a state funeral earlier today. And we are of course showing you those visuals of the state funeral which was accorded to Nana Patekar, recognizing his extraordinary contribution to Marathi theatre, Marathi cinema and Hindi cinema. Prime Minister Modi also paid tribute to Nana Patekar and praised his immense contribution to Hindi and Marathi movies. Known for his intense and powerful performances, Nana carved a unique place for himself in Hindi and Marathi cinema. From Parinda and Krantiveer to Ab Tak Chappan, but what we're showing you right now is the state funeral that was accorded to Nana Patekar earlier this evening. A lot of people remember him not just as an actor who played very many roles, but as a philanthropist. Maharashtra Chief Minister and the Deputy CM were also in attendance at Nanchiwali in Pune. Nana's body was taken from Goa to Pune. He wanted his last rites to happen where he was born, at the Nanchiwali village in Pune.
1: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा?
2: नाना पाटेकर और विश्वनाथ पाटेकर, the veteran actor, filmmaker and theatre artist, has died on October 8 at the age of 75, following a reported cardiac arrest in Goa.
3: जायचं आहेस मी म्हणजे आहे नाही माहिती नाही थोडी प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो एक काळ येणारच पण त्याच्या आधी मला जे करायचं ते मी करू शकतोय का मी प्रयत्न केले का माझ्या विरुद्ध जर मर्यादित असेल माझी मुलं माझी बायको माझं घर याच्या पुरतच जगायचं असेल तर मग जग आणि बन
2: Born into a Marathi family with 7 siblings and an alumnus of the Sir J.J. Institute of Applied Arts in Mumbai. He came from a humble beginning with numerous hardships and started working at the mere age of 13 years to support his family. During his early life, he enrolled into theatre from his school days and was shaped by Marathi theatre before entering Bollywood and mainstream cinema. It not only shaped his professional life but also his personal life. As he married Neel Kanti Patekar in 1978 when they met through Marathi theatre world. Together, they had two sons, Durvasa and Malhar. Durvasa tragically passed away due to an illness when he was only 2.5 years old. Regarded as one of Hindi and Marathi cinema's greatest performer, Nana Patekar was known for his naturalistic intensity and his mastery of controlled emotions. His performance on screen were marked by a raw intensity that captivated audiences, drawing them into the depths of his characters. In 1999, at the peak of his career, Nana Patekar quit films for a while and chose to serve the Indian Army in Kargil War. After special permission from the Defence Minister himself, Nana had trained with the Maratha Light Infantry of the Army for 3 years in the early 90s while writing his film Prahar, and that prepared for the front lines at the war. His love as a patriot and for Indian Army was indeed a notable one. Beyond his cinematic achievement, off-screen through NAM Foundation, he stood beside drought-hit farmers. Through his initiative, the help is provided by the foundation as monetary funds and kind. It worked as a ray of hope for farmers in the agricultural sector.
4: बहुत shocking है जब नाना जी के बारे में सवेरे सुना बहुत ही shocking लगा ये कि नाना जी इतने टैलेंटेड इतने अच्छे इंसान बहुत बार मुलाकात हुई इनसे हमेशा इनकरेज करते थे हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की इनकरेजमेंट मिलता था और ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो और जो कभी भी दिखाते नहीं थे नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था देखता था उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से हम देखते चाहे मराठी फिल्म हो मराठी थिएटर हो उनका योगदान उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था
2: The tributes to the veteran actor are pouring. Bollywood actors pay respect to one of the finest talent of his generation. Akshay Kumar wrote that he is saddened by the news and regarded Nanaji truly one of a kind. Actor Raveena Tandon expressed her sadness and shock and said that we have lost a legend today. Sunil Shetty, Anupam Kher, Smriti Irani and many more expressed their grief. His legacy remains in every corner of cinema, from Marathi films to Bollywood, and his philanthropy works continues to support the pharma community. Mayank Chaudhary, NDTV.
0: Well, from intense drama to unforgettable comedy, Nana Patekar had a way of making every word count. His powerful delivery turned dialogues into memories that stayed with audiences for generations. Let's revisit some of those dialogues and moments.
1: सुबह घर से निकलो भीड़ का एक हिस्सा बनो शाम को घर जाओ दारू पियो बच्चे पैदा करो और सुबह तक फिर एक बार मर जाओ क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका
5: दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है दुख को भूलना पड़ता है देख बीवी बच्चे का श्राद्ध किया क्या नहीं था उसके पास पैसा था गाड़ी थी बंगला था बच्चे को मार डाला खुद को चला डाला हम क्या किया देखते बैठा भूल गया सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ के?
1: ये ले ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून बता इसमें मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा बता बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया तू कौन होता है फर्क करने वाला
6: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से कौन सा कानून कैसा कानून ये कानून तो चंद मुजरिमों बन बैठा है इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं
1: भारत मेरा देश है बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा इट शुड बी लाइक दिस यू नो
5: समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए देना होगा मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग
7: कहा इस्लाम खतरे में है दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसलों को इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है इसका तुझे इल्म ही नहीं क्योंकि तू जाहिल है
1: का तमाशा देखने आप मुझे लटका देंगे जुबान ऐसी बाहर आएगी आंखें बाहर आएगी थोड़ी देर लटकता रहूंगा फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी
8: आलो, ले लो।

0: एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास, डेली ड्यूटी लगती है तो इतना टाइम नहीं है.
1: विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म यू आर वेयरिंग, बट एजिंग ग्राउंड पेंस आने के नाते, एक फीमेल होने के नाते आपको कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक फीमेल चाहे यूनिफॉर्म में हो या ना हो बट हाथ सफाई.
0: मैम ये तो आपको भी पता है, गलती लगता है, बहुत गंदा लगता है, बट क्या कर सकते हैं मैम, हमारी ड्यूटी है.
2: मेरी वाइफ ने कल शाम को ही देख के मुझे फ़ोन किया, कह रही आपको चोट लगी क्या, कह रहे किसी ने आपको लात मारी. मैंने अब मैं फ़ोन पे क्या कहता उसे, मैम ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. फिर उसने बाद में दूसरे एंगल से वो वीडियो दोबारा देखा, फिर उसने कहा नहीं नहीं आपके साथ ही हुआ है, सच में हुआ है, और तो मीडिया में सब जगह हो ही गया है, तो फिर हमारे पास भी कैमरे, उनमें भी रिकॉर्डिंग है सब जगह. अब मेरी फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव सब मेरे को फ़ोन कर करके वो पूछ रहे हैं, तो एक इमेज वाली बात है, सब जगह एक तरीके से बड़ी बेइज्जती वाली सी बात हो रही है.
3: Undeterred, the Congress has now declared that tomorrow they will be meeting with the President of India and hand over a memorandum to her. The intention is clearly to keep the momentum going, to keep the pressure on the government and on the Chief Election Commissioner. But as these protests and agitations continue, the fundamental question still remains. Because remember, not only did the issue of SIR go all the way up till the Supreme Court, but now the continuation of Chief Election Commissioner, that has also been challenged before the Supreme Court of India. So who will decide in a democracy? Is it going to be the Supreme Court or the streets?
4: Two days se hame protest nahi karne diya ja raha hai. Pehle din hame roka, election commission ke samne roka. Uske baad humne kaha hum jantar mantar ja ke karna chahte hain, aur kal aapne dekha जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा. रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी. They will be brought to justice.
5: देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष संविधान की हत्या करते हुए अराजकता का माहौल बना रहा है, और यह कहना गलत नहीं होगा जो सारे आरोप राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं. ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन आधार क्या है? दीज बेसलेस एलिगेशंस बीइंग लेवल्ड बाय एन इररिस्पॉन्सिबल एनार्किस्ट ऑपोजिशन डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो बेस.
6: हमने कल कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों का वीडियो अकाउंट भी सुना है, उन्होंने जो बयान दिए हमने वो भी सुने हैं. महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ ली गई, कांग्रेस कार्यकर्ता 50-50 इकट्ठे होकर महिला पुलिसकर्मियों को एकांत में ले जाने का काम कर रहे हैं. ये ऑन वीडियो महिला पुलिसकर्मी जवाब दे रहे हैं. वहां पर महिला पुलिसकर्मियों ने खुद वीडियो पर आकर के बताने का काम किया है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं.
7: प्रियंका गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे.
8: बिल्कुल बिल्कुल.
7: अगर बचाने की कोशिश में किसी को धक्का लगा तो इसको धक्का लगना नहीं कहते हैं. भाजपा को यह समझना पड़ेगा कि इस तरह का झूठा नैरेटिव चला करके आप इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को, इस सत्याग्रह को ध्यान उसका नहीं भटका सकते. मुद्दा यह है कि ज्ञानेश कुमार चोर है. मुद्दा यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो अवैध सरकार है, क्योंकि इसको चुनाव आयोग ने अवैध तरीके से बनवाया है.
9: राहुल गांधी फियरिंग कि जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है वो तथ्यों से इतना वीक है कि राहुल गांधी को एक माहौल बनाने का प्रयास करना पड़ रहा है. इज राहुल गांधी अटेम्प्टिंग टू इंटिमिडेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज एंड इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू स्ट्रीट एनार्की? क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो सड़क पर भीड़ को मोबिलाइज करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती है. सुप्रीम कोर्ट फैसला तथ्यों के आधार पर करती है.
10: बीजेपी, अमित शाह, मोदी एंड गणेश कुमार इज क्रिएटिंग एनार्की ऑन इंडियन डेमोक्रेसी. दे आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. वी आर

0: Modi also paid tribute to Nana Patekar and praised his immense contribution to Hindi and Marathi movies. Known for his intense and powerful performances, Nana carved a unique place for himself in Hindi and Marathi cinema. From Parinda and Krantiveer to Ab Tak Chappan, but what we're showing you right now is the state funeral that was accorded to Nana Patekar earlier this evening. A lot of people remember him not just as an actor who played very many roles, but as a philanthropist. Maharashtra Chief Minister and the Deputy CM were also in attendance at Nanchiwali in Pune. Nana's body was taken from Goa to Pune. He wanted his last rites to happen where he was born, at the Nanchiwali village in Pune.
1: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा?
2: Nana Patekar or Vishwanath Patekar, the veteran actor, filmmaker and theatre artist, has died on October 8 at the age of 75, following a reported cardiac arrest in Goa.
3: जायचं आहेस, मी म्हणजे आहे नाही माहिती नाही, तुम्ही प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो एक काळ येणारच, पण त्याच्या आधी मला जे करायचं ते मी करू शकतोय का? मी प्रयत्न केले का? माझ्या पुरतं जर मर्यादित असेल, माझी मुलं, माझी बायको, माझं घर, याच्या पुरतंच जगायचं असेल तर बस जग आणि बन.
2: Born into a Marathi family with 7 siblings and an alumnus of the Sir J.J. Institute of Applied Arts in Mumbai, he came from a humble beginning with numerous hardships and started working at the mere age of 13 years to support his family. During his early life, he enrolled into theatre from his school days and was shaped by Marathi theatre before entering Bollywood and mainstream cinema. It not only shaped his professional life but also his personal life, as he married Neel Kanti Patekar in 1978 when they met through Marathi theatre world. Together, they had 2 sons, Durvasa and Malhar. Durvasa tragically passed away due to an illness when he was only 2.5 years old. Regarded as one of Hindi and Marathi cinema's greatest performer, Nana Patekar was known for his naturalistic intensity and his mastery of controlled emotions. His performance on screen were marked by a raw intensity that captivated audiences, drawing them into the depths of his characters. In 1999, at the peak of his career, Nana Patekar quit films for a while and chose to serve the Indian Army in Kargil War. After special permission from the Defence Minister himself, Nana had trained with the Maratha Light Infantry of the Army for 3 years in the early 90s while writing his film Prahar, and that prepared for the front lines at the war. His love as a patriot and for Indian Army was indeed a notable one. Beyond his cinematic achievement, off-screen through Naam Foundation, he stood beside drought-hit farmers. Through his initiative, the help is provided by the foundation as monetary funds and kind. It worked as a ray of hope for farmers in the agricultural sector.
4: बहुत shocking है जब नाना जी के बारे में सवेरे सुना, बहुत ही shocking लगा ये कि नाना जी इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे इंसान. बहुत बार मुलाकात हुई इनसे, हमेशा इनकरेज करते थे, हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की इनकरेजमेंट मिलता था. और ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो, और जो कभी भी दिखाते नहीं थे. नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था, देखता था, उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से, हम देखते, चाहे मराठी फिल्म हो, मराठी थिएटर हो, उनका योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था.
2: The tributes to the veteran actor are pouring. Bollywood actors pay respect to one of the finest talent of his generation. Akshay Kumar wrote that he is saddened by the news and regarded Nana ji truly one of a kind. Actor Raveena Tandon expressed her sadness and shock and said that we have lost a legend today. Sunil Shetty, Anupam Kher, Smriti Irani and many more expressed their grief. His legacy remains in every corner of cinema, from Marathi films to Bollywood. And his philanthropy works continues to support the pharma community. Mayank Chaudhary, NDTV.
0: Well, from intense drama to unforgettable comedy, Nana Patekar had a way of making every word count. His powerful delivery turned dialogues into memories that stayed with audiences for generations. Let's revisit some of those dialogues and moments.
1: सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए खिलौने समझौते कर चुका। दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। देख, बीवी बच्चे का श्राद्ध किया, क्या नहीं था उसके पास, पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था, बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला, हम क्या किया, देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ के? ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
5: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
1: भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, यू नो। समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग।
6: कहा इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है।
1: मौत का तमाशा देखने आप मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
7: आलो, ले लो, कांदे, ले लो। Hello, Lelo.
0: Well, one of Indian cinema's finest actors, Nana Patekar, left a distinct mark with his versatility. From the intensity of Krantiveer to the comedy of Welcome. But his greatest role has been off-screen. Known for his brutally simple lifestyle, Nana Patekar has dedicated a large part of his earnings to help drought-hit farmers of Maharashtra through his NGO, NAM Foundation. An organization he co-founded with fellow actor Makarand Anaspuri to provide relief, water conservation and support to the farmers and the families. And on that note, we're slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.

0: Akhilesh Yadav will meet the president tomorrow. They've rather put in a request to meet the president of India, Draupadi Murmu, tomorrow.
1: Ganesh Kumar criminal conspiracy karke Hindustan ko hijack kiya hai, constitution ko nasht kiya hai, vote chori ki hai, aur hum opposition aapko keh rahe hain ki karwai hogi, they will be brought to justice. This is our guarantee. You will see that these four people are brought to justice.
2: कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था बची हुई है जिसके ऊपर की राहुल गांधी का भरोसा है? तो जब राहुल गांधी का भरोसा नहीं है तो इसका मतलब अंबेडकर जी के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये एनार्की पैदा करना चाहते हैं और ये इस देश को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की साजिश है और ये जनता कभी उसको माफ नहीं करेगी।
3: गांधी जी के समाधि पे हम आकर प्रार्थना किए कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे और जो वोट चोरी हो रहा है ये बंद होना चाहिए और जो गलती किए तो रिजिग्नेशन देना चाहिए और देश के जो नागरिक है उनके वोट के अधिकार बचाए।
4: मैं तो यही कहता हूं कि अराजकतावादी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें केवल समाज में विष घोलना आता है। अगर उस नहीं था तो केरल में भी चुनाव इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया था, तमिलनाडु में जहां पीछे से वो सत्ता में पहुंचे हैं वहां का भी चुनाव इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया था। है हिम्मत तो राहुल गांधी जी को पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए।
5: चुनाव का पहले कभी आप सुना है बीजेपी का लीडर लोग कहते हैं इतना वोट में जीतेगा उतना वोट में जीतेगा, इसका मतलब होता है इतना मारे होते कैलकुलेटिंग वोट, छप्पा वोट, थप्पा वोट, लूट करा भोट, लूट करे लुटेरा बाहरी बेशी दिन टिकते पारे ना।
6: जो विपक्ष अराजकता का माहौल देश में फैलाने का प्रयास कर रहा है, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको भी ये देखने की आवश्यकता है कि संवैधानिक तरीके से कैसे न्याय मिलता है।
0: We're looking at 3 days of protest, repeated detentions and 2 opposition lunch meetings. The INDIA bloc's showdown with the Election Commission has played out on Delhi streets and around the table. Here's more.
7: Three days, 3 confrontations. From street protests to police detentions and political strategy over lunch. The opposition's battle against CEC Ganesh Kumar has only intensified. Day 1, October 6, opposition MPs march against the Election Commission. Police barricades stop them near Akashwani Bhavan. An 8-hour standoff follows. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and several leaders are detained.
8: Rahul Gandhi at this moment is standing on top of the barricade. The first 2 barricades that the police has put, Rahul Gandhi is standing on those barricades at this moment.
9: आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
10: आज काम चोर शोर मचा रहा है।
7: Day 2, October 7, from Khadge's lunch meeting to Sagar Ratna to a protest march towards Jantar Mantar. But once again, police block the opposition's path. Detention buses roll in.
11: I will not move from here.
7: Rahul, Priyanka and protesters taken into custody again.
12: हर FIR मेरे लिए मेडल है।
13: सरकार को बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
14: देश के लोकतंत्र को आप सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर उठ रहा है।
8: The women workers are being dragged. People are being dragged by the police.
7: Day 3, October 8. Another lunch, another political strategy. This time at Moit's in Connaught Place. From garlic bread and dim sums to kulfi, the opposition's lunch menu makes headlines. But the political battle continues with the Rajghat march on the agenda.
8: The third consecutive day, the Congress party coming onto the ground, making their presence felt at this moment. So they are ready to march. The protesters have started to move, and so is the security paraphernalia at this moment.
15: This is the Congress party

0: And well, it's a major loss for Indian cinema this morning. Veteran actor Nana Patekar has passed away at the age of 75. Nana Patekar will be accorded a state funeral. He rather was accorded a state funeral earlier today. And we are of course showing you those visuals of the state funeral which was accorded to Nana Patekar, recognizing his extraordinary contribution to Marathi theatre, Marathi cinema and Hindi cinema. Prime Minister Modi also paid tribute to Nana Patekar and praised his immense contribution to Hindi and Marathi movies. Known for his intense and powerful performances, Nana carved a unique place for himself in Hindi and Marathi cinema. From Parinda and Krantiveer to Ab Tak Chhappan, but what we're showing you right now is the state funeral that was accorded to Nana Patekar earlier this evening. A lot of people remember him not just as an actor who played very many roles, but as a philanthropist. Maharashtra Chief Minister and the Deputy CM were also in attendance at Nanchiwali in Pune. Nana's body was taken from Goa to Pune. He wanted his last rites to happen where he was born, at the Nanchiwali village in Pune.
1: ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा?
2: नाना पाटेकर और विश्वनाथ पाटेकर, the veteran actor, filmmaker and theatre artist, has died on October 8 at the age of 75, following a reported cardiac arrest in Goa.
3: जायचं आहेस मी म्हणजे आहे काही माहिती नाही तुम्ही प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो एक काळ येणारच पण त्याच्या आधी मला जे करायचं ते मी करू शकतोय का मी प्रयत्न केले का माझ्या पुरतं जर मर्यादित असेल माझी मुलं माझी बायको माझं घर याच्या पुरतंच जगायचं असेल तर बुजत आणि बन.
2: Born into a Marathi family with 7 siblings and an alumnus of the Sir J.J. Institute of Applied Arts in Mumbai, he came from a humble beginning with numerous hardships and started working at the mere age of 13 years to support his family. During his early life, he enrolled into theatre from his school days and was shaped by Marathi theatre before entering Bollywood and mainstream cinema. It not only shaped his professional life, but also his personal life, as he married Neel Kanti Patekar in 1978 when they met through Marathi theatre world. Together, they had two sons, Durvasa and Malhar. Durvasa tragically passed away due to an illness when he was only 2.5 years old. Regarded as one of Hindi and Marathi cinema's greatest performer, Nana Patekar was known for his naturalistic intensity and his mastery of controlled emotions. His performance on screen were marked by a raw intensity that captivated audiences, drawing them into the depths of his characters. In 1999, at the peak of his career, Nana Patekar quit films for a while and chose to serve the Indian Army in Kargil War. After special permission from the Defence Minister himself, Nana had trained with the Maratha Light Infantry of the Army for 3 years in the early 90s while writing his film Prahar, and that prepared for the front lines at the war. His love as a patriot and for Indian Army was indeed a notable one. Beyond his cinematic achievement, off-screen through NAM Foundation, he stood beside drought-hit farmers. Through his initiative, the help is provided by the foundation as monetary funds and kind. It worked as a ray of hope for farmers in the agricultural sector.
4: बहुत shocking है जब नाना जी के बारे में सवेरे सुना बहुत ही shocking लगा ये कि नाना जी इतने टैलेंटेड इतने अच्छे इंसान बहुत बार मुलाकात हुई इनसे हमेशा इनकरेज करते थे हमेशा अच्छी फिल्म बनाने की ये इनकरेजमेंट मिलता था और ऐसे इतने टैलेंटेड कलाकार और लोगों के लिए इंडस्ट्री में खड़े होते थे जो और जो कभी भी दिखाते नहीं थे नाना जी का एक था कि मैं इतने सालों से उनको मिलता था देखता था उनकी फिल्मों को हम लोग देखते थे बचपन से हम देखते चाहे मराठी फिल्म हो मराठी थिएटर हो उनका योगदान उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था.
2: The tributes to the veteran actor are pouring. Bollywood actors pay respect to one of the finest talent of his generation. Akshay Kumar wrote that he is saddened by the news and regarded Nanaji truly one of a kind. Actor Raveena Tandon expressed her sadness and shock and said that we have lost a legend today. Sunil Shetty, Anupam Kher, Smriti Irani and many more expressed their grief. His legacy remains in every corner of cinema, from Marathi films to Bollywood, and his philanthropy works continues to support the pharma community. Mayank Chaudhary, NDTV.
0: Well, from intense drama to unforgettable comedy, Nana Patekar had a way of making every word count. His powerful delivery turned dialogues into memories that stayed with audiences for generations. Let's revisit some of those dialogues and moments.
1: सुबह घर से निकलो भीड़ का एक हिस्सा बनो शाम को घर जाओ दारू पियो बच्चे पैदा करो और सुबह तक फिर एक बार मर जाओ क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है दुख को भूलना पड़ता है देख बीवी बच्चे का श्राद्ध किया क्या नहीं था उसके पास पैसा था गाड़ी थी बंगला था बच्चा था बच्चे को मार डाला खुद को चला डाला हम क्या किया देखते बैठा भूल गया सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ ये ले ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून बता इसमें मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा बता बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया तू कौन होता है फर्क करने वाला
5: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से कौन सा कानून कैसा कानून ये कानून तो चंद मुजरिमों को बन बैठा है इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं
1: भारत मेरा देश है बेईमानी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा इट शुड बी लाइक दिस यू नो समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए देना होगा मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग
6: कहा इस्लाम खतरे में है दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है इसका तुझे इल्म ही नहीं क्योंकि तू जाहिल है
7: मेरी मौत का तमाशा देखने आप मुझे लटका देंगे जुबान ऐसी बाहर आएगी आंखें बाहर आएगी थोड़ी देर लटकता रहूंगा फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी
8: आलो, ले लो, कांदे, ले लो, आलो।

0: बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
1: भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस यू नो।
2: समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग।
3: कहा इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं क्योंकि तू जाहिल है।
4: मेरी मौत का तमाशा देखने आप मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
5: आलो, ले लो, कांदे, ले लो, आलो, ले लो।
6: Well, one of Indian cinema's finest actors, Nana Patekar, left a distinct mark with his versatility. From the intensity of Krantiveer to the comedy of Welcome, but his greatest role has been off-screen. Known for his brutally simple lifestyle, Nana Patekar has dedicated a large part of his earnings to help drought-hit farmers of Maharashtra through his NGO, NAM Foundation. An organization he co-founded with fellow actor Makarand Anaspuri to provide relief, water conservation and support to the farmers and the families. And on that note, we're slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.